मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 अगस्त 2026, प्रातः के 5:56 और 10 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: सभा की शुरुआत करेंगे रोज ही की तरह समाचारों के साथ हिंदी और अंग्रेजी में। समाचारों के लिए आइए आपको दिल्ली लिए चलते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
2: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।
2: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई

ईश्वर के बारे में कुछ किताबें पढ़ने से या किसी गुरु के आशीर्वाद से ईश्वर और उनकी महिमा को नहीं समझा जा सकता। यह केवल एक अनुभूति है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। वंदना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज स्वतंत्रता दिवस है और 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उनसे नाराज होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता हो, बल्कि ईश्वर तो वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो। ये कभी ना सोचें कि देश ने हमारे लिए क्या किया। सोचें तो ये सोचें कि हमने देश के लिए क्या किया, हमने देश को क्या दिया। जब हम डिमांड करते हैं कि हमारी सड़कें अच्छी नहीं हैं या और इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है, सबसे पहले ये देखें क्या आपने अपना उत्तरदायित्व पूरा किया, क्या आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न या अन्य जो टैक्सेस भरने सरकार की ओर से ज़रूरी हैं क्या आपने वो भरे। खैर, बातें और करेंगे, पहले सुनते हैं एक भजन।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

यदि आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विशाल है। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं, तो कुछ समय पश्चात वो हमें हजार दानों के रूप में प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा भी हम पर इसी प्रकार बरसती है। जब हम ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, तो ईश्वर हजार कदमों के साथ हमारी ओर आते हैं।

ईश्वर की भक्ति हमें अद्भुत शक्ति देती है। हमारे मन के सभी विकार दूर हो जाते हैं, मन शांत और सरल हो जाता है। हम अपने समय और मन को अच्छे कार्य

में लगा सकती हैं। ईश्वर इस जगत के कण कण में है, वो सदा हमारे पास, हमारे साथ, हमारे सुख दुख में रहती है। जब भी आपके मन में किसी के प्रति बुरे विचार या घृणा आ रही हो, तो ऐसे में अपने मन को ईश्वर के चरणों में लगाएं। ऐसे विकार ईश्वर के मनन से ही दूर हो जाते हैं। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको स्वयं पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम चिंतन।
1: जीवन को जीने के दो ढंग हैं। एक तो ढंग है संघर्ष का, दूसरा ढंग है समर्पण का। संघर्ष अहंकार की यात्रा है और समर्पण खो जाने की यात्रा है। संघर्ष में सदा ही व्यक्ति तनाव में, चिंता में, दुख में, विपत्तियों में घिरा रहता है। समर्पण में व्यक्ति आनंद की अवस्था को प्राप्त करता है। मनुष्य को छोड़ दें तो सारा अस्तित्व करीब करीब समर्पण में जी रहा है। कहीं भी कर्ता होने का भाव नहीं है, सिर्फ मनुष्य में कर्ता होने का भाव है कि मैं करता हूं। और जितना ज्यादा ये बोध हमारे भीतर आता है कर्ता होने का, उतने हम दुखी हो जाते हैं। तो धर्म की यात्रा है अपने कर्ता भाव से मुक्त होना और उसकी रजा में रजामंद रहना। और जितना ज्यादा समर्पण में डूबता है साधक, उतना भार मुक्त होने लगता है, हल्का होने लगता है, क्योंकि अहंकार बहुत भार लाता है और समर्पण तुम्हें निरहंकार बना देता है, भार मुक्त कर देता है। और एक बार तुम भार मुक्त हो गए, फिर बिना प्रयास के जिंदगी चलने लगती है, फिर प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही समझे कि चील आकाश में उड़ती है, जब वो बहुत ऊंचाई पे चली जाती है तो सिर्फ पंख फैला देती है और कुछ नहीं करती, फिर प्रयास नहीं करना होता। एक ऊंचाई पे जाकर के चील सिर्फ अपने पंखों को खोल देती है और बहने लगती है। ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। और समर्पण बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी। और संघर्ष सदा ही अतीत और भविष्य में है। अगर संघर्ष की यात्रा हम देखें तो सदा अतीत में होती है या भविष्य में होती है, लेकिन समर्पण सदा ही वर्तमान में होता है, अभी और यही होता है। समर्पण में अतीत और भविष्य दोनों समाप्त हो जाते हैं, मात्र बचता है निखालिस वर्तमान, अभी और यही। कृष्ण जब मथुरा छोड़कर द्वारका गए, कृष्ण के आयाम में एक आयाम को यह समझे, ऐसे तो बहुआयामी व्यक्तित्व है कृष्ण। जो सारथी लेने आया था उन्हें, तो जब गोकुल छोड़कर मथुरा की तरफ जाने लगे वो, तो गोपियों को पता चला कि कृष्ण जा रहे हैं और गोपियां भावविवल होकर रोने लगी और दौड़ती दौड़ती राधा देवी के पास पहुंच गई। बोला कि हमारी बात तो कहना सुनता नहीं है, तुम जाकर उसे मनाओ कि वो जाए नहीं यहां से। राधा जाकर के रास्ते में खड़ी हो गई जहां से कृष्ण का रथ गुजरता है मथुरा जाने के लिए। रास्ते में जैसे ही कृष्ण राधा को खड़े देखते हैं रास्ते में, फौरन रथ रुकवाते हैं। सारथी पूछता है उनसे, इनका क्या परिचय है?

0: तो कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि दुनिया जब दुखी होती है, उलझन में पड़ती है, तो वो मेरे पास आती है, और मैं जब कोई उलझन में पड़ता हूं तो मैं इनके पास जाता हूं। स्त्री के प्रति इतना सम्मान ये कृष्ण के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी प्रातः 7 बजे सुनिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन का सीधा प्रसारण। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 7:30 पर सुनिए सुप्रभात। आज बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस, देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य। सुगम संगीत आप सुन पाएंगे 8:45 पर। आज आपको सुनवाएंगे कुछ भजन। मरुमंगल कार्यक्रम में सुनिए सूरजाराम भाट को। समय 9:10। 9:30 पर फिल्म संगीत और कार्यक्रम आज के फनकार प्रातः 10 बजे। अनुरोध गीत का समय रहेगा प्रातः 11 बजे और कुछ बातें कुछ गीत 12:05 पर। 12:30 पर सुगम संगीत में आनंद लीजिए कुछ गजलों का। 12:50 पर खेत खलिहान में आज जानकारी देंगे नरमे कपास की फसल में कीट नियंत्रण। 1:05 पर महिला जगत में बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस, हरियाली, तीज और झूला परंपरा, बचपन का 15 अगस्त, तिरंगा लहराना, लड्डू और परेड, क्विक चाट आइडियाज़ भी बताएंगे। फिल्म संगीत 2:30 पर और उर्दू सर्विस के प्रसारण दोपहर 3 बजे से हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। शाम 5 बजे सुनिए युववाणी। आज जो बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस, पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के वीर, ग्लोबल वार्मिंग, भारतीय खिलाड़ी मीराबाई चानू और साथ ही साथ आज का इतिहास। सराय की शाम 6:05 पर और चौपाल शाम 7:30 पर। आज जो बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस, देश हित में बातें, साथ ही साथ बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी देंगे। हमारा विशेष कार्यक्रम किसान वाणी शाम 7 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 8 बजे जयपुर से सुनिए विशेष समाचार तरंग। सुगम संगीत रात्रि 9:15 पर और 9:30 पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम दिए गए संबोधन के AI आधारित वॉइस क्लोनिंग संस्करण का प्रसारण आप सुन पाएंगे रात्रि 9:30 पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनिए रात्रि 10 बजे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में समाचार थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: निर्णयः कृतः। सूचना प्रसारण मन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 इत्यस्मिन् संशोधनस्य राजपत्रे अधिसूचना प्रकाशनस्य दिनांकात् एषः निर्णयः प्रवर्तयिष्यते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्रे घटितानां परिवर्तनानां दृष्ट्या विज्ञापनावधि सम्बद्धानां प्रावधानानां पुनरावलोकनस्यावश्यकता अनुभूता इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको लाल किला लिए चलते हैं, जहां से आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
5: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
6: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
5: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: आइए लाल किला चले।
2: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस। नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्र नायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्र नायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र, अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ।
3: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की ये सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए

0: पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं, तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहाँ बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहाँ से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहाँ पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई पढ़ रहे हैं यहाँ से।
1: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहाँ लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहां पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहां आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियाँ जो हैं वो धरती तक नहीं पहुँच पा रही हैं और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहाँ तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहाँ पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हैं हवा के साथ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था। वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहाँ सब

0: से पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं। प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल है। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह। सेना की अपनी यूनिफॉर्म में वर्दी में सजे धजे गर्व से सीना तरा हुआ। सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकैप के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल डीसीपी विकास मीणा दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिनी हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रीय गीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है जिसको हम यहाँ के कण कण में यहाँ के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहाँ के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ वंदे मातरम की गूंज यहाँ पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा है उस क्षण की जब पहली बार यहाँ से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहाँ लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो एनसीसी से संबंधित रखते हैं, एनसीसी के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं। और उसके साथ साथ हमारे माय भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं और इन्होंने जो अधिसंख्य हैं बहुसंख्यक हैं उसमें उन्होंने सफेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है, ज्यादातर जिनकी संख्या है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है और उसी रंग के साथ केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहाँ रचा है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा
1: जी। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आज़ाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहाँ से हम देख रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक बेहद खूबसूरत यहाँ से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहां पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एक टक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है। कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है। साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज हिस्सा है अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहां आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हीलचेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहां पर सामान्य जन हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, माय भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहां पर बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहां पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर, हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो तीन प्रधान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं, दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहाँ बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की

0: में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात यह है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र सरोवर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए, जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित हैं।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र। मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है माँ भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम माँ भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत, माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गारद का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन विक्की मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद सलामी देगी, कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में।

0: संयुक्त कमांडर के नेतृत्व में टुकड़ों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मान कर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधे हुए कदमों से, हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कार्पेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे, हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का यह बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहाँ मौजूद उपस्थित बच्चे माननीय प्रधानमंत्री का अपनी आवाज के साथ स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के अब का आगमन हुआ है थल सेना की टुकड़ी के पास। 25 जवान नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा के हाथों में। प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी नम्रता लेकिन अभिमान का अभामंडल देश के वीर सैनिकों के मुख पर, विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा में हम सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में। तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए, और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है श्रोताओं। 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा, और भारत, हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को, तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को, जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से मां भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष गौरवशाली 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेंद्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे, तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी ध्वज फहराने में। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे

0: मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे, इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहां बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियां जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला, मैं गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी।
1: निश्चित रूप से और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण के वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यही हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले, जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था तब यहां घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर रमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठकें की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहाँ चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय है, विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं, प्राचीर की तरफ देख कर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
0: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकड़ टुकड़ निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में

यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है, क्योंकि हम जानते हैं, तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आज़ाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस, सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है, इस समय ध्वज स्थल पर।

और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।

0: और इस समय आकाश आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे, ध्वनि सुनाई दे रही है, वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर ये Mi-17 हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अटखेलिया करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहाँ से हमारी बाई तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए, बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहाँ चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहां ठीक सामने, उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है, पंखुड़ियां है पीले रंग की, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही है।
1: और जैनेन्द्र, किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखड़ी को वो कैच कर पाए, और ये पंखड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई, बेहद रमणीय दृश्य है ये
0: जी। और राष्ट्रीय सलामी गारद अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहाँ से प्रस्थान करती हुई सेना के बैंड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर जो इसमें शामिल थे, जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया, स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहाँ राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी, लेकिन सस्वर यहां उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखारबिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में या ठीक सामने हमारे बाई और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में, जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ, जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का, वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय, देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर, जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र की प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की, पराकाष्ठा की।

अपने तप त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक

बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है। हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ थे, इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे

देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं, और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फॉल में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, और देशवासियों का संकल्प है कि आप 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। मेरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती है। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट हो

करता है तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता है, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसी ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है, पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है, भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया, बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है, कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो,

एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और इसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है। और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी

बैटरी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और उसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी, देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके।

भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरते मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे। और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना हो, हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के

लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्र तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफपीए के कारण हमारे श्रीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है और इसे मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे लिए कोई बजबर है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे ऊर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए, डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग।

भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए। यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उस पर तेजी करनी चाहिए। और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति, देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक

ऑटोमेटिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके चला है तो हमारी सातवीं धारा है, और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आयोग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है, और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है, क्षमता बहुत है, लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें, और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र, दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों ना हो। कॉन्सर्ट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है, विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सर्ट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक

बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी। हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों को उसने नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 2014 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 2014 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर

विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके दे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, ...2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, 1,000 करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खेले।

जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं तब, मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता की है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत दो तिहाई खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व तो होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद, लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुर्बल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4-4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में

3000 से ज्यादा हमारे पुलिस के सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस विषाद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास

दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की थी, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी है। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है, और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था,
उसको

पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से यह सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ का। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने 1 दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं। और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है। और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है। और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं, और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने

परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराएं, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत-बहुत आभार महोदय। और वो सामने
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ, और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उठते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जन समुदाय यहाँ पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में। और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख लें और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है, जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी, यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने

0: की शक्ति की सप्त धारा की यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है। इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है। भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
1: और माननीय
0: प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जैनेन्द्र,
1: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए, और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है, और इसीलिए वो देश, चूंकि ये युवाओं का देश है और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो 7 अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है, और जो 7 बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का बच्चे जब खड़े होते हैं तो सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का ये एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो वो दृश्य हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
0: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी, और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते हों, और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण हूँ, राष्ट्रहित में होने वाला सारा उत्थान हूँ, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवाण हूँ, मैं युवा हूं, मैं भारत का प्राण हूं।
1: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का। नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं। हमारी बाई तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए, वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है, और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक, जहां तक

0: भी दर्शक आए हुए हैं और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर आए हुए हैं। अधिकांशता उसमें से वहाँ प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
1: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है। इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद, सासने भेंट करने के बाद अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए। और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, GST हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षाकर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए वहाँ थोड़ा अनुशासन बनाते हुए स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहां आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं। और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है, गरिमामय मंच है, यहां से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, और अब नया लक्ष्य है हमारे सामने विकसित भारत का जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
0: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की, और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि की राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है, 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं। और किसी भी गांव में 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती हैं। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने

0: हाथ हिलाकर यहाँ के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम चरण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहाँ उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहाँ से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
1: जी बिल्कुल, और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं। वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाईं ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है, और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व के 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूँ। जय हिंद।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन का सीधा प्रसारण।

0: आकाशवाणी समाचार कक्ष की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। समुद्र में नए अवसर तलाश करने के लिए नो गो एरिया के स्थान पर गो अहेड एरिया योजना की शुरुआत। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा, हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा, सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के

0: 50 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, अपनी सोच और काम की गति को बदलना होगा।
0: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चला है और अब नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के सुधार पर भी हम आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। उन्होंने गति शक्ति को सप्तधारा की चौथी शक्ति बताते हुए कहा कि निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा।
0: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधनों की बाधा नहीं होती, बल्कि सोच की सीमाएं बाधा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को कच्चे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99% समुद्र तट को, नो गो एरिया को, तेल भंडार की खोज के लिए गो अहेड घोर एरिया घोषित किया जाएगा।
0: हमने समुद्र तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
0: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में हम चिप के महत्व को समझते हैं।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का आह्वान किया।
0: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भवः के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया

0: किया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति से देश आगे बढ़ रहा है।
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है।
0: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आए संकट का हर किसी पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों पर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों में बड़ी कीमतों का असर नहीं आने दिया।
0: यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपए पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपए में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपए में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत के 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने देश के युवाओं से जनगणना में सटीकता के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर सभी बहुत हद तक विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। यह श्रृंखला 2025-27 के ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंका टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा हैं। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ आज तिरंगे की छठा

0: रहे हैं। कुछ अखबारों ने देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है तो कुछ ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों और रक्षा कर्मियों की गाथाएं सचित्र प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवालों की सूची को भी अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है। अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश को भी मुख्य पृष्ठों पर सुर्खियों में प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख इस संबोधन में किए जाने को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। परीक्षा प्रणाली सुधारने में जुटी सरकार। हिंदुस्तान ने हाल में शौर्य का नया इतिहास रचने वाले रक्षा कर्मियों की वीरता की कहानियां प्रकाशित की हैं। शीर्षक दिया है, तिरंगे को दिल दिया, देश के लिए जान। नवभारत टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का विश्लेषण प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख अपने मुख्य पृष्ठ पर किया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, अभिव्यक्ति का हक। पत्र का कहना है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों के सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के रास्ते को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए। पत्र ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर कुछ विद्यार्थियों के विरोध पर दंडात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है, गरीबी से गर्व करने की ओर भारत। जबकि लोकसत्ते ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श को विस्तार से प्रकाशित किया है।
1: अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां और भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमरीका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समुद्र में तेल भंडार की खोज के लिए नो गो एरिया को गो अहेड एरिया घोषित किया गया। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को अपनी स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoists national flag at Red Fort in Delhi. Addressing the nation, Prime Minister unveils 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming Vikasit Bharat by 2047. Mr. Modi says India has set target of 100 gigawatt nuclear energy and set up

0: 5 new reactors. Prime Minister says India has rapidly progressed in the last 12 years with significant progress in digital, manufacturing, infrastructure and social welfare sectors. President Draupadi Murmu says government taking comprehensive steps to curb unfair means in public examinations. President approves 78 gallantry awards, including 13 posthumous for defence and Central Armed Police Forces personnel. And in cricket, first test of 2-match series between India and Sri Lanka to begin today at Gale. And now the news in detail. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Vikasit Bharat by 2047. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
1: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है? पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
0: Prime Minister said a nation becomes great when it moves forward on the strength of its resolve and capabilities.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty.
1: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि-कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं।
0: He said India, which was once among the fragile 5 economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal to become a developed nation by 2047.
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है
0: Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defence production has increased nearly fourfold.
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े
0: He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions by 100 times. Mr. Modi said the NDA government has worked with equal seriousness towards the welfare and amenities for the common man.

0: Prime Minister said energy security is today's need, and that's why we have already taken steps in this direction. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. He added that India has set a target of commissioning 5 new nuclear reactors during the current decade.
1: अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो एआई हो डेटा सेंटर हो हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं
0: Prime Minister said India has already begun production at 3 semiconductor plants and 5 to 8 more plants are expected to come up in the coming years.

0: पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: Prime Minister said India has already begun production at 3 semiconductor plants and 5 to 8 more plants are expected to come up in the coming years.
0: देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी, हमारे यहाँ भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में चीप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चीप अनिवार्य है। और इसे इस चीप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका।
1: Prime Minister said India must move towards self-reliance and not remain dependent on other countries. He asserted that the country needs to strengthen its own capabilities and protect its national interests.
0: बीते वर्षों में हमारा conviction रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है, और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है।
1: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Vikasit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years.
0: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: Prime Minister said that government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things: cost, quality and skill.
0: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the Morning News. President Draupadi Murmu has said that the government is undertaking comprehensive steps to completely curb the use of unfair means in public examinations. Addressing the nation on the eve of the Independence Day, she said students are the architects of India's future and government is making the system more transparent, secure and trustworthy for the youth.
2: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations. The objectives of these reforms are to completely curb the use of unfair means in public examinations, make the examination system more transparent, more secure, and more trustworthy for the youth.
1: President Draupadi Murmu has approved 78 gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and Central Armed Police Forces on the eve of Independence Day. 13 awards have been given posthumously. These are 9 Kirti Chakras, 1 Bar to Shaurya Chakra, 19 Shaurya Chakra,

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ में नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत आज अपना 80वां यौम आजादी मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर परचम कुशाई की। वजीर आजम ने मुल्क से खिताब करते हुए साल 2047 तक विकसित भारत बनने के मुल्क के सफर को तेज करने पर मरकूज सात निकाती इस्लाही फ्रेमवर्क सप्त धारा का ऐलान किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने 100 गीगावाट न्यूक्लियाई तवानाई पैदा करने और 5 नए रिएक्टर्स कायम करने का हदफ मुकर्रर किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 12 साल के दौरान तेजी से तरक्की की है, जिनमें डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचे और समाजी बहबूद के शोबों में पेशरफ्त काबिले जिक्र है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हुकूमत पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए जामे इकदाम कर रही है। सदर जमहूरिया ने 78 बहादुरी इनामात को मंजूरी दी है, जिनमें दिफाई और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस अहलकारों के 13 बादज मर्ग इनामात भी शामिल हैं। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान दो टेस्ट

0: मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से गाले में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज अपना 80वां यौमे आज़ादी मना रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तारीखी लाल किले से यौमे आज़ादी तकरीबात की क़यादत की। वज़ीर आज़म की लाल किला आमद पर पहली मरतबा वंदे मातरम की धुन बजाई गई। वज़ीर आज़म ने परचम कुशाई की और उसके बाद कौमी तराना गाया गया। परचम कुशाई के दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई और भारतीय फजाइया के MI-17 हेलीकॉप्टर्स के जरिए फूलों की पंखुड़ियां निछावर की गईं। इस साल की यौमे आज़ादी तकरीबात साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर में यंग इंडिया के तावुन के इतराफ़ के तौर पर युवा शक्ति को भी तस्लीम करती है। लाल किले की फसील से मुल्क से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली मरतबा लाल किले की फसील से वंदे मातरम गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद सैलाब और चट्टाने खिसकने के वाकयात हुए हैं, जिससे कई कुनबे मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म ने सभी मुतासर कुनबों को यकीन दिलाया कि मुल्क उनके साथ मजबूती से खड़ा है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 12 वर्षों में मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने मुसम्मम इरादे और लगन के साथ मुल्क को नई बुलंदियों तक पहुंचाने की तमाम मुमकिन कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों के सबब 25 करोड़ अफराद ने गरीबी से निजात हासिल की। उन्होंने कहा कि भारत, जो कभी 5 कमजोर मईशतों में शामिल था, आज दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशत बन चुका है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने एक बड़ा हदफ अपने सामने रखा है और वो है साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनना।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
0: मुख्तलिफ शोबों में अहम हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 12 साल में दिफाई पैदावार में तकरीबन 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि खादी और देही सनत की पैदावार में 5 गुना इजाफा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 7 गुना, जदीद रेलवे कोच की मैन्युफैक्चरिंग में 21 गुना और मोबाइल फ़ोन तैयार करने में 33 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सारिफिन की तादाद में भी तकरीबन 4 गुना, जबकि डिजिटल माली लेन देन में जबरदस्त 100% इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि एनडीए हुकूमत ने आम आदमी की बहबूद और बुनियादी जरूरियात के तई यकसां संजीदगी के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हजारों जाब्ता जाति तामीली तकाजों और सैकड़ों फरसुदा कवानीन को मनसूख करके तर्ज हुक्मरानी में भी गैर मामूली तब्दीलियां की हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की राह पर गामजन होते हुए कई गैर मुतवक्के बहरानों पर कामयाबी हासिल की है। उन्होंने COVID-19 वबा और यूक्रेन और मगरबी एशिया के तनाज़ों के बाद पैदा होने वाले चैलेंजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन बहरानों के दौरान टीकों, ईंधन, गैस, डीजल और फर्टिलाइजर्स के बारे में लोगों के दरमियान खौफ फैलाने की खातिर कई तरह की अफवाहें फैलाई गईं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि भारत की मंसूबाबंद

0: एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: वजीर आजम ने कहा कि 5 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों की सलाहियतों को पहचानने के लिए गांवों, शहरों और स्कूलों में खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के हुनर की शिनाख्त की जाएगी और उन्हें मुल्क के बेहतरीन खिलाड़ी बनने में मदद करने के लिए खुसूसी तरबियत दी जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि भारत आज खेलों की दुनिया में अपना मकाम बना रहा है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि भारत साल 2030 में दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी करेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जंग और अदम इस्तेकाम के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। असीमी यौम आज़ादी के मौके पर कल शाम कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय मईशत की शरह नमू औसत आलमी शरह नमू से 2 गुना से भी ज्यादा रहने की तवक्को है।
2: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
1: सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए जामे इकदामात कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम आज़ादी 2026 के मौके पर डिफेंस फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अमले के लिए बहादुरी के 78 अवार्ड्स को मंजूरी दी है। 13 अवार्ड्स बादज मर्ग दिए जाएंगे। भारत और श्रीलंका की टीमों के दरमियान 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में आज से शुरू होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रस्वी।
3: शुक्रिया नितिका। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने मुल्क के 80वें यौम आज़ादी के जश्न और सदर जमहूरिया के यौम आज़ादी से कबल कल शाम कौम से खिताब को अपनी 6 सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप की 6 सुर्खी है। सदर जमहूरिया के बयान पर मबनी है, युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी दौलत, सुनहरे मुस्तकबिल का भरोसा।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत आज अपना 80वां यौम आज़ादी मना रहा है। वजीर आजम मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर परचम कुशाई की। वजीर आजम ने मुल्क से खिताब करते हुए साल 2047 तक विकसित भारत बनने के मुल्क के सफर को तेज करने पर मरकूज 7 निकाती इस्लाही फ्रेमवर्क सप्त धारा का ऐलान किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने 100 गीगावाट न्यूक्लियाई तवानाई पैदा करने और 5 नए रिएक्टर्स कायम करने का हदफ मुकर्रर किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
1: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है. पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए. उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं. पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं.
0: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty.
1: Pichle 12

0: समय देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं।
1: He said India, which was once among the fragile five economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal to become a developed nation by 2047. Prime Minister said energy security is today's need and that's why we have already taken steps in this direction. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Vikasit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years.
0: I would like to remember that time when the भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: Prime Minister said that government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things: cost, quality and skill.
0: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: Prime Minister Modi also announced to provide free online coaching for poor and middle class family for various public examinations. He said this is a revolutionary step towards making quality education accessible to everyone, led by top teachers. He said this will save thousands of crore of rupees of middle class family in coaching classes. In men's cricket, India won the toss and elected to bat against host Sri Lanka in the first test of 2-match series at Gale International Cricket Stadium. The series is part of the ICC World Test Championship 2025-27 cycle. And that is the end of this news bulletin.

0: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल
1: किया। वर्ष 2000 विकसित भारत के लिए उत्पादन कृषि तकनीक गतिशक्ति।
0: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

0: बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85

0: 0% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
0: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
0: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
0: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
4: आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी को। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम है देश प्रेमी।
5: नफरत की

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
6: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आईजी

0: गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
0: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
0: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
0: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
4: पूर्व और पश्चिम, आइए इस फिल्म से महेंद्र कपूर और साथियों को सुने गीत इन दी वर्क का।

0: Finance Limited. Make life easy. Toll free number 1-800-420-2233.
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है. ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है.
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट.
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें.
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां.
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान.
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा.
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए. मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए.
0: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड. मेक लाइफ इजी. टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233.
4: अब सुनते हैं फिल्म उपकार का गीत महेंद्र कपूर और साथ.

0: गोल्स तक पहुंचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: अब सुनते हैं फिल्म उपकार का गीत महेंद्र कपूर और साथियों के स्वरों में, गीत गुलशन बावरा का।

0: आइए अब सुनते हैं सुखविंदर सिंह, उदित नारायण और साथियों को। गीत आनंद बख्शी का, फिल्म का नाम है हिंदुस्तान की कसम।
1: होशियार होशियार

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी हमें सुन सकते हैं। 11 बजे हैं, आप श्रोता सुने फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत।

अभी आपने नया दौर इस फिल्म का ये गीत सुना। आवाज थी मोहम्मद रफी और साथियों की। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी थी रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, ये हमारे श्रोता हैं। ग्राम पीपलोड, सरगांव, छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा और ज्योति और शिवांश वर्मा। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भक्त, किशु तासु। सिद्धार्थनगर, दयारपुर, भबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप और अशोक येले। ये है एटा रोड, गंज, डुंडवारा। उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, शेख मोहम्मद कलीम और डीएच बच्चन। गांव साधेवाला, सिरसा, हरियाणा से रामेश्वर माहर, परमेश्वरी माहर, जिगर और जानवी। ग्राम गोपी खिरिया, तहसील भांडेर, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से राहुल पाल, ज्योति अंजना, हरिमोहन पाल और बेबी लक्ष्य। गांव कुमार खेड़ा, सहारनपुर से ये है सैयद मशरूर, शैना हसन, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सदाम, अदीफ। पटेल नगर, मटोल, मलोट से ये हमारे श्रोता है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया,

गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। और ये हमारे श्रोता है चक 15 पीएस से। स्वतंत्रता दिवस की ये शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श सिंह जोशन, रोबिन सिंह और जोशन, ये वेंकोर से हमें लिखते हैं। फाइव स्टार रेडियो श्रोता संघ जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से ये हमारे श्रोता है योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक, सुरेश चोरसिया, फर्रुखावादी। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका। दादरीगेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। इन श्रोताओं ने हमें इस गीत के लिए फरमाइश लिख भेजी है। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है क्रांति। आवाज दी है महेंद्र कपूर ने, संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा है।

अगले गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है। ये है महालक्ष्मी इनकलेव श्रीगंगानगर से, प्रेम नरेश, दीपक सत्यनारायण, राम कुमार, वेद, गोल्डी शर्मा, दिवाकर, तिलकराज, सुमित्रा और भावना नाई। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, विवान लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, मसीता डब्वाली से दर्शन लोट, सरगुन, इंद्रजीत, कमलजीत, सागर और हनी लोट। ये है कवाई श्यालपुरा, जिला बारा, राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, ज्योति, आकृति, जय, राहुल। ये है ग्राम झाझड़िया वाला 18 जीजी से जीतनाथ, मनीराम, मोहन लाल, महला, पालाराम, पुनिया, श्रवण, रिणमा और कानाराम। शाहदुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। मुकतसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंद्र कौर धीमान, रवनीत और निशु। ये है डब्वाली, हरियाणा से जेके बाकोलिया, सुनीता बाकोलिया, संजय, अनिल और मीनू बाकोलिया। अलीगढ़ डब्वाली से बसंत सिंह, चंद्रराज कुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। ग्राम दौलतपुरा श्रीगंगानगर से शिवलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित और हेमंत। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ये है राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय। ये है शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन। गांव गोविंदगढ़ माजीवाला श्री कनपुर से ये है राजू टूटेजा, खुशदिल, उर्मिला टूटेजा, गुड्डू जीनू, मनु आदित्य, भूमि राखी, अमृत बडवाल, शिव सेठी, कनपुरी, इस्माइल टूटेजा, पवन बी आर और इनके साथ ही है नेत्राम कड़ेला। हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, आहिल खान और जिशान। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन सोनी, सीता और गीता। ग्राम बगबुडवा पथरिया

से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका उत्कर्ष नेताम। नई आबादी अबोहर पंजाब से डिंपल सोनी, संतोष सोनी, राखी सोनी, कोमल सोनी और सिद्धि सोनी। यह सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत रॉय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बीटा बजाज और इनके साथी, और यह शाहिल भी इनके साथ है। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, ओषा रॉय, अमित कुमार और हैप्पी रॉय। दुबई गाजीपुर नेवादा से ये है प्रतीक रॉय, रोशनी और प्रांजल। शेरपुर कला गाजीपुर से ही है अवधेश रॉय, प्रीति रॉय और नवनीत रॉय। आप सबकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। फिल्म का नाम है सिकंदर आजम, आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

अगले गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है। ये है संदीप माकड़, ज्योति माकड़, मन्नत भरत कमल शहनी गोरैया जलंधर से, केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठटई, कमल ठटई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशीराम महेंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल और ताराचंद दाइमा, सूरतगढ़ से लेखराज जी शाक्य है, पवन कुमार, सुरजीत सिंह, रवि कुमार, कुंदनलाल शाक्य, जीवराज सिंह और उदय सिंह, हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी, टेगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। ये है रानी बाजार बीकानेर से रानी जांब और बिट्टू जांब, पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, प्राग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्ण देवांगन। आजाद नगर लक्षर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, चक 14 पीएसबी से कुलदीप सिंह, राजविंद्र कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह,

हरदीप मनराज ब्रिक और काला मिस्त्री, दंतरेगी से भगवत प्रसाद वर्मा, शांति लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव, भाविक ढींगरा, पंचकुला सेक्टर 11 से अतुल शर्मा। ये है हमारे श्रोता स्वर्ण सिंह, गांव दोलेवाला, जिला मोगा, पंजाब से। तहसील भादरा अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, अशोक कुमार, उपेश कुमार, शाहिल, मुरारी लाल, मदन लाल शर्मा, महावीर लोहरा, ममता, मीतू, किनू, पंकज सारस्वत। इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है, ये है नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और मदनलाल वर्मा। भोपालगढ़ राजस्थान से महेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान, पूजा परिहार। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजो बेगम हाशमी, मोहम्मद तौशीफ, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस न्यावकर, निर्मला और विशाल न्यावकर। चकदासा एसडीपी लालगढ़ जाटान से रामेश्वर निरानिया, सुमन, दिव्या, नूतन, पंकज, मेहरचंद, हेमू, मनीषा, ब्रजलाल और राम प्रताप जाखड़। ये हमारे श्रोता है गांव चंदबाजा फरीदकोट पंजाब से, अंग्रेज सिंह गेजा, गुरमीत कौर, जगप्रीत सिंह, मनप्रीत कौर, कमलजीत सिंह और ये है चरणजीत कौर, मनकृत कौर, गुरकिरत कौर और ये है गुरप्रताप सिंह। तंगोरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत तंगोरी, जसवीर कौर, महिकप्रीत कौर और सहिजप्रीत सिंह। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से ये है राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा और बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से ये है विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मुणत। आप सबकी पसंद पर आपको सुनाते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है फना।

अगले गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने। यह है गांव नलोई, तहसील शिवानी, मंडी, जिला सिरसा से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजवाला कार्तिक, वेदांश, गांव ढाणी, लाल खानोहर से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खां, किशन परिहार, ये हमारे श्रोता है ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। बालकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश, मिथिलेश वर्मा, गांव खारिया ढाणी, जिला सिरसा से सतवीर सिंह, बिजारनिया, देवेंद्र, राजपाल।

अभिषेक योगेश पूजा अर्जु नव्या बिजारनिया। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शैना और निवान शर्मा। दंतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामन वर्मा, पार्श मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। गांव साबुआना फाजिलका से कर्ण कंबोज, चरण कंबोज, रियांश प्रिश कंबोज। ये है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद केफ अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। तेलंगाना निजामाबाद से शेखला बख्श, बेगम राबिया शेख शेख, रहीमोना और दानिश आशीष शेख। ये है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा। गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम प्रकाश बगड़िया, क्रियांश बगड़िया और योगेश बगड़िया और इनके साथ ही रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। और ये है ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोने, योगिता कुमारी प्रियाली हागोने, पार्थ और इनका पूरा परिवार। दिल्ली से गुरमीत सिंह, मीता अलिका, डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा, क्रमजीत लखोत्रा, सरवन सिंह, सर्वजीत लखोत्रा, रानी सोनू, रजनी। ये है बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान, डुकू। ये है हितेंद्र दास, आसाम से हमें लिखते हैं। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। श्रीगंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जोनी बंसीवाल, धनराज, पुरखलुष आदाब सप्रेम नमस्कार लिखते हैं ये हमें कबीर, रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार तामोरिया और इनके परिवार के सदस्य। गांव कोहला हनुमानगढ़ से ये है महावीर सुथार और इनका पूरा स्टाफ। ये है नरेंद्र भाटी, वीणा भाटी, गणेश चौक, जोधपुर से। आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म हम हिंदुस्तानी से, आवाज़ है मुकेश और साथियों की।

अगले गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने। ये है बुलडाणा वडसिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। गांव सेरडा तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से मंटू शर्मा, सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डेगेस्ट्रो, रोजी, पर्ल और फिलिश। ये हमारे श्रोता है विजय पाटिल महाराष्ट्र जालना से। धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निशार शलमानी, नौशाद शलमानी, बेबी आलिया। आयान बाबू ये हमारे श्रोता है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से। ममता, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू। मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार टोट। मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर अंसारी, कमरून निशा, सबिस्ता मोहम्मद, नसीम, पलक लुबना और यस मंसूरी। गुंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाजी शेख, दानिश अमन, राधा नामदेव। इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है बस स्टैंड मानसा पंजाब से अंजनी रानी गर्ग, रवि गर्ग, शिल्पा। गांव भागसर शादुल शहर से मंगदराम धींगड़ा, सुमन संजना, सचिन कुमार धींगड़ा। बोटसरा नीला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, भीमा बेबी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांश साहू। गांव फूलों मिट्टी जिला बठिंडा से राम सिंह टेलर, लक्ष्मण सिंह टेलर, कुलजिंद्र सिंह, मनप्रीत कौर, जसनप्रीत। ये है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी।

यादव। बीड शहर महाराष्ट्र से ये श्रोता है, नंद किशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजनी करवा, बाला साहेब, राम निवास अग्रवाल, धनंजय और पी बी कुल थे। मेन बाजार कुडलबाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर, प्रदीप यमेकर। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मणिकपुरी, राजा दास मणिकपुरी और रानी मणिकपुरी। चक एक पीएस अनूपगढ़ से गुरबचन बेदिल, रज बेदिल, बलविंदर और रुपेंदर रूबी। गांव निजामाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है शहीद, आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने।

अगले गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने। ये है श्यामला राजपाल, जयपाल संदीप।

कुमार चिमनलाल मंडी के श्री सिंहपुर से। ये हमारे श्रोता है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज और इनके परिवार के सदस्य, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनसो रेहान, गांव मलक्का जिला बठिंडा पंजाब से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया, परमिंदर, सचनूर और मनिंदर। ये हमारे श्रोता है नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओम प्रकाश गायकवाड़, वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजगर खान, वर्ली मुंबई से ही ये है अजीम खान, बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीरा मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन और मेगा मस्किन। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा, नगराना से लालचंद नाथ, गांव कलाना तहसील बादरा जिला हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वारसरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव, कृष्ण, हनुमान, किड़ूराम, लीलाधर, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा, गांव लोहगढ़ ठाकरावाला से स्वरण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज। ये है विकास जाखड़, तेजपाल जाखड़, कमल शर्मा, विनोद, शिवपुरी, जैसलमेर से। और ये है शंभुदयाल खटक, गांव जाखोद राजस्थान से अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और कुमारी पूजा खटक, अमरगढ़ शहदुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत, गुरनूर, कुलविंदर कौर, हरविंदर मान और राज सिंह, प्रीत मान। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा विविधा, गांव हीरा वाली फाजिलका, पंजाब से हजारीलाल पुरोहित, मोनी पारिक, भूपेंद्र पारिक, जगत मंडावरा और राजू मंडावर, कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर वेदिका और ये हमें लिखते हैं अहमदपुर खेगाम खंडवा से, उदयपुर राजस्थान से रमेश नाचानी, भारती, विनित, मिथिल, तिलक, ये है शेरवाड़ी छत्रपटी, संभाजी नगर से प्रकाश, सुषमा प्रांजलि, शोहम सदानंद, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी आरती और नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजगर, अजहर खान, अजीम, मोहम्मद सईद, हवासी, निकत, परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी, अवान अब्बासी। और ये हमें लिखते हैं ऊपरकोट जिला चौखंडी बुलंदशहर से। आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

इसी गीत को सुनना चाहते थे प्रेम नरेश दीपक सत्यनारायण राम कुमार वेद गोल्डी शर्मा दिवाकर महालक्ष्मी क्लेव श्री गंगानगर से तिलकराज सुमित्रा और भावना।

इसी गीत के साथ अनुरोध गीत संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, FM 100.1 मेगाहर्ट्स। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी हमें सुन सकते हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। अब श्रोता सुने कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद श्रोता सुनेंगे 12:05 पर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30। खेत खलिहान में किसान भाई सुनेंगे नरमे कपास की फसल में कीट नियंत्रण, समय रहेगा 12:50। 1:05 पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत। इसमें आज जानकारी स्वतंत्रता दिवस, हरियाली तीज और झूला परंपरा। इसके अलावा बहनें बचपन का 15 अगस्त, तिरंगा लहराना और किचन टिप्स विषय पर जानकारी। 2 बजे श्रोता समाचार सुनेंगे। 2:30 पर फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं। 3 बजे श्रोता हमारी उर्दू सर्विस के कार्यक्रम सुन सकते हैं। संध्या 5 बजे युववाणी का प्रसारण किया जाएगा। इसमें स्वतंत्रता दिवस, पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के वीर, इसके अलावा भारतीय खिलाड़ी मीराबाई चानू और आज का इतिहास विषय पर जानकारी श्रोता सुन सकते हैं। 6:05 पर सराइकी श्रोता सुन सकते हैं। 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार श्रोता सुन सकते हैं। 7 बजे संध्या किसान वाणी का प्रसारण किया जाएगा। चौपाल का प्रसारण संध्या 7:30 पर किया जाएगा। रात्रि 8 बजे विशेष समाचार

तरंग। इस कार्यक्रम को श्रोता सुन सकते हैं 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन। इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 9:30 पर। श्रोता सुगम संगीत का आनंद ले सकते हैं 9:30 पर। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम पर दिए गए संबोधन के अंश संस्करण का प्रसारण किया जाएगा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, इसका प्रसारण रात्रि 10 बजे किया जाएगा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 12:05 हुए हैं। आप श्रोता सुने कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में बातें करेंगे आज़ादी का दिन 15 अगस्त। 15 अगस्त एक तिथि या कैलेंडर पर लिखी कोई तारीख नहीं है, बल्कि उस संघर्ष की कहानी है, याद है, जिसमें अनगिनत लोगों ने अपना बलिदान कुर्बानी दी। आइए आज़ादी के इस पावन पर्व पर सुनते हैं कुछ यादें कुछ गीत।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां,

हमलावर इस दीवार से टकरा कर वापस जाते रहे, जो 1962 में हुआ, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों

बात कर रहे थे आजादी का दिन 15 अगस्त, जिस आजादी को हम सहज मानते हैं उसे पाने के लिए किसी ने क्या खोया होगा। किसी की मां ने अपना बेटा खोया होगा, किसी पत्नी ने अपना सुहाग, किसी बच्चे ने अपना पिता, और किसी नौजवान ने अपनी पूरी जिंदगी। आज जब हम तिरंगे को सलाम करें तो एक पल के लिए उन चेहरों को भी याद करें जिनकी कुर्बानी की वजह से ये तिरंगा आज गर्व के साथ लहरा रहा है।

श्रोताओ, आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि आज़ादी पाने के लिए हमें केवल एक स्वतंत्र देश नहीं दिया,

0: उन्होंने हमें एक सपना दिया, एक ऐसे भारत का सपना जो लगातार आगे बढ़े, और अब उस सपने को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। आज़ादी की मशाल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहे, और अभी ये मशाल हमारे हाथों में है। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों को सिर्फ याद न करें, बल्कि उनके सपनों के भारत को बनाने का संकल्प लें।
1: जिसमें वो हरम तेरा नहीं है, तू अमन का और सुलह का अर...

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलो हर्ट्ज पर, FM 100.1 MHz। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब श्रोता सुने सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज सुनते हैं जगजीत सिंह की गाई चंद गजलें।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपने जगजीत सिंह की गाई संत गजलें सुनी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।
1: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया? अरे भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
0: खेत खलिहान में आइए सुनते हैं जानकारी। वर्मी कंपोस्ट एक उद्योग।
2: किसान भाइयों, सघन खेती और ज्यादा लाभ कमाने खातर खेती में रासायनिक उर्वरक और खरपतवार नाशी हार्मोन्स को ज्यादा उपयोग करनो माटी और मानव स्वास्थ्य में किया लगातार गिरावट आने लग रही है, और सागे सागे किया कि पर्यावरण को नुकसान होने लग रही है। रासायनिक खेतियों किसान भाइयों की लागत भी बढ़ने लग रही है, और बन आपकी मेहनत को पूरा लाभ कौन मिलने लग रहे हो। इन खातर जैविक खेती अपनाना ही अपने करें एकमात्र विकल्प है। जगह में किया कि जैविक खादों को ज़्यादा उपयोग करके माटी की उत्पादकता और उर्वरकता टिकाऊपन जो को है वो बने रहे, और माटी को जैविक स्तर भी बढ़े। जगहों किया कि लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाए, और रासायनिक खादों के मुकाबले जैविक खादा सस्ती और बनाने में बहुत ही आसान हुए, और इन उपयोगों माटी में ह्यूमस की वृद्धि हुए। जैविक खादा पौधे की वृद्धि खातर किया गया जरूरी खनिज पदार्थ प्रदान करे, जका माटी में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा बूंटे ने मिले, जको किया गया उत्पादन अपनों बढ़े और पानी की लागत भी सागे सागे कम हो जाए। पौध वृद्धि खातर किया गया जरूरी आवश्यक तत्व जिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और काफ़ी मात्रा में गौण पोषक तत्वों की पूर्ति जगी है, वह किसान भाइयों जैविक खादों का प्रयोग ही हो जाए। किसान भाइयों जैविक खादा सड़न पर कार्बनिक अमल देवे, जो कि है माटी में अघुलनशील तत्व ने घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देवे, जको कि माटी को पीएच मान जो है वो संतुलित रहे। यूँ कह सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाए, जको कि फसल को उत्पादन ज़्यादा हो, और जैविक खादों का प्रयोग हूँ पोषक तत्व पौधा ने लंबे टाइम तक मिलता रहे, और यह खादा आपको अवशिष्ट गुण माटी में छोड़े, और इन खातर एक फसल में खाद का प्रयोग दूसरी फसल ने क्या लाभ मिले, और सागे सागे माटी उर्वरकता को संतुलन भी बने रहे हुए, और आगे प्रयोग हूँ बीजांग अंकुरण सही और जड़ांग विकास अच्छा हुआ है, और जैविक खादों उपचारित अन्न जगह हुआ है, और सागे सागे सब्जी फल आदि को स्वाद जो है वो रासायनिक खादा के तुलना में प्राकृतिक रूप उत्तम हुए, और पौधा में जैविक खादा का प्रयोग रोगों लड़ने की शक्ति है वह ज़्यादा हो जाए, और जैविक खादा

पर्यावरण की मित्र भी हुए और इनका क्या क्या ज़्यादा उपयोगों की प्रकार की हानि भी कोनी हुए। और साथ ही साथ किसान भाइयों, कंपोस्ट खाद के उपयोग रासायनिक उर्वरक का नकारात्मक प्रभाव ने भी अपना कम कर सका और इनका उपयोग माटी की उर्वरकता और उत्पादकता में साथ ही साथ वृद्धि तो हो ही हुआ है और जगह मूल्यांकन किया अपा माटी के भौतिक रासायनिक और जैविक गुणा में होने वाला परिवर्तन द्वारा अपा आसानियों समझ सका। बात करें किसान भाइयों बर्मी कंपोस्ट की, तो माटी की उर्वरकता और उत्पादकता ने लंबे टाइम तक बनाए रखने खातर जैविक खादा जियाँ गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु खाद आदि को योगदान बहुत ही जरूरी हुआ है और अपने देश में करोड़ों टन खेती का अवशिष्ट जियाँ कि भूसो है, कड़व है, पत्तियाँ आदि उपलब्ध हुआ है। पर इन ज़्यादातर मात्रा में किसान भाई अवशिष्ट जैविक पदार्थों ने किया बाढ़ देवे, जबकि अवशिष्ट जैविक पदार्थों ने कैंसुआ जगह है वह उत्तम किस्म की खाद जिन आप बर्मी कंपोस्ट का भी वहाँ परिवर्तित कर देवे, जगहों के करोड़ों टन पोषक तत्व अपन प्राप्त हो सके और कैंचुए द्वारा खेती अवशिष्ट को रूपांतरण जो है वो बर्मी कल्चर के रूप में जाने जावे। और आपने विश्व में कैंचुआ की लगभग 7,000 प्रजातियां पाई जावे, जगह में केवल 40% प्रजातियां ही भारत में पाई जावे। इनमें कई प्रजातियां बर्मी कल्चर खातर किए गए प्रयुक्त करी जावे, जिया कि एपीजी कैंचुआ प्रजाति जी है वह अपने देश में सारू उपयुक्त पाई गई है। किसान भाइयों बर्मी कंपोस्ट के पोषक तत्व और गोबर की खाद या जगह पोषक तत्व की अगर तुलनात्मक बात करा तो नत्रजन जगह है वह बर्मी कंपोस्ट में 2-3%, गोबर की खाद में 0.5-0.93%। फास्फोरस की बात करा तो बर्मी कंपोस्ट में 1.5-2%, गोबर की खाद में 0.4-0.8%। पोटेशियम की बात करा तो बर्मी कंपोस्ट में 1.5-2%, गोबर की खाद में 0.8-1.2%। और पीएच मान की बात करा तो बर्मी कंपोस्ट में 7-7.5 और गोबर की खाद में 7.2-7.9 पीएच मान जो है बोरे हुए। अब बर्मी कंपोस्ट का लाभ की बात करा तो गोबर की खाद की तुलना में बर्मी कंपोस्ट में एंटीनोमाइसिटीज यानी कि सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा कई गुना ज्यादा हुआ है, जगह वहीं खाद तैयार फसलों में बीमारियां प्रतिरोधी क्षमता जी है वह बढ़ जावे और बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग माटी की जल शोषण धारण क्षमता में वृद्धि हुए, जगह क्या क्या माटी को कटाव रुके और पौधा में क्या क्या जल उपलब्धता पर वृद्धि हुए। इन खाद का उपयोग जल वाष्पीकरण में कमी हुए और इन खातर फसला में कम सिंचाई की जरूरत पड़े और सागे ही सागे खेता में ह्यूमस वृद्धि के कारण बरसात की बूंदा को आगाज सहन की क्षमता साधारण माटी की तुलना में कई गुना हो जावे और माटी को क्षरण भी कम हुए। बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग बुंटे में संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हुए और सागे सागे सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़े, जबकि माटी में रहने वाला सूक्ष्म जीवाणुओं खातर लाभदायक हुए और बने सक्रिय बनावे। बर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि की बात करा तो बर्मी कंपोस्ट तैयार करने खातर छायादार स्थान की अपने जरूरत पड़ेगी, जटे पानी को भराव नहीं होना चाहिए और शेड होना चाहिए और पानी का स्रोत जगह है वह नेड़े ही हुए, जगह किया गया अपने पानी देने में आसानी रहे। छायादार जगह को आकार उपलब्ध कार्बनिक ठोस अपशिष्ट की मात्रा पर निर्भर करे और इन छायादार स्थान में एक ज़्यादा क्यारियाँ अपना बढ़ा सका। गोबर की खाद की उपलब्धता अनुसार क्यारियाँ अपन निश्चित करनी चाहिए, आंगी लंबाई अवशिष्ट की मात्रा अनुसार अपन रखनी चाहिए, चौड़ाई लगभग 3 फीट निस्तो किया गया अवशिष्ट पलटन में किया अपन असुविधा रहेगी। सारों पहला क्यारी में नीम की पत्तियां की एक पतली परत अपन बिछा देनी चाहिए और इन पर 4-5 दिन तक ठंडो करेड़ो गोबर अपन रेड़ देना चाहिए और थोड़ा पानी डाल के अपन नम कर लिया और इन परत में 1 इंच मोटी वर्मी कल्चर की परत जगह में केंचुआ मिलेड़ा हुआ है वह अपन बिछा देना है। केंचुआ नमी पाते ही नीचे कानी चलिया जावे और क्यारी ने ढक्कन खातर किया ऊपरों घास फूस सूखी पत्तियां अपन बिछा देनी चाहिए और अब आना किया बोरी में अच्छी तरह ढक देना चाहिए और पानी को छिड़काव करके इन्हें गीला अपना करता रहना चाहिए और लगभग 2 महीना का मामा गोबर केंचुआ द्वारा बर्मी कंपोस्ट में बदल जावे और केंचुआ जो कहे वह कार्बनिक पदार्थ ने खाता रहे और आपकी जिसकी कास्टिंग है वह ढेर के ऊपर किया छोड़ता जावे। अब इन्हें प्रयोग करने की विधि की बात करें तो माटी में नमी उपलब्ध होने की अवस्था में प्रति हेक्टेयर 2.5-3 टन बर्मी कंपोस्ट खेत में डाल के अपने बुआई कर देनी चाहिए। सब्जियां खातर किया प्रति हेक्टेयर 5 टन बर्मी कंपोस्ट खेत में रेड़ के बीज की बुआई अपन करनी चाहिए। औषधीय पौधे में प्रति हेक्टेयर 5 टन बर्मी कंपोस्ट डाल के अपने रोपाई करनी चाहिए और फूलों का बगीचा में 3-5 किलो प्रति पौधे थावड़े में डाल के अपन गुड़ाई करनी चाहिए और गृह वाटिका में 5 किलो प्रति वर्ग मीटर डाल के अपने बुआई कर देनी चाहिए। बात करें किसान भाई बर्मी कंपोस्ट उद्योग लाभकारी किए हैं तो वो व्यवसाय जो है वो किसान भाई किसी भी छायादार स्थान शुरू

0: सके। ई व्यवसाय में जी खेती करने वाली महिला है वह घर के कार्य के सागे इन आसानियों कर सके और इमा खेती अवशिष्टों को बेहतर उपयोग हो जाए और बर्मी कंपोस्ट के सागे केंचुआ ने पेचंगों कार्य आसानियों कर सके और कम लागत में ज़्यादा मुनाफो भी अपना किसान भाई प्राप्त कर सके। बर्मी कंपोस्ट ब्रांड की तकनीक आसान होने के कारण सीखने में भी कह गई टाइम को लगे और इन सागे सागे कहेगा अपने एक दो बातों को भी ध्यान रखना है तो क्यारिया ने किया सीधी धूप और बारिश को अपन बचानी है तो केंचुआ अपना मर जाएगा। गर्मी में दो बार और बरसात में जरूरी होने पर पानी का छिड़काव करता रहना है और खाद निर्माण की प्रक्रिया के दौरान बार बार उथल पुथलापन नहीं करनी है और यूँ किए केंचुआ नष्ट होने को खतरा रहेगा। खाद प्रक्रिया के पूर्व होने के टाइम केंचुआ की संख्या और देखभाल पर निर्भर करें और केंचुआ द्वारा गोबर की खाद में परिवर्तन तुरंत होने के बाद ठंडे गोबर की क्यारी तैयार अपन रखनी चाहिए और बिग मत अपन छा के छोड़ देना चाहिए ताकि भूख केंचुआ मर ना जावे। और आ बातों के हिसाब में आप कैस कहाँ के आधुनिक युग में जटे किसी भी उद्योग ने चलाने खातर कठिनाइयों का सामना करना पड़े बटे आज खेती के क्षेत्र में बर्मी कंपोस्ट लघु उद्योग ने कह के किसान भाइयों ने नई दिशा प्रदान करी है और कम खुद और देश के आर्थिक स्तर ने ऊंचो उठाने में मदद कर सके। तो किसान भाइयों आज को टाइम ही तो ही देव आ गया। राम राम सा राम राम।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान, विषय था बर्मी कंपोस्ट एक उद्योग। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

माधुरी वशिष्ठ। राष्ट्र आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों से स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें निश्चित दिशा में आगे बढ़ना है। भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु से ही संभव होगा। उन्होंने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान किया ताकि देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके। श्री मोदी ने कहा कि इसके लिए युवाओं का सहयोग जरूरी है। देश को अब डिजाइन से लेकर विनिर्माण तक पूरी मूल्य श्रृंखला पर ध्यान देना होगा। इधर प्रदेश भर में भी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस का उल्लास छाया हुआ है। स्वाधीनता दिवस का राज्यस्तरीय समारोह बीकानेर में आयोजित किया गया। करणी सिंह स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति और यूपीआई पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर में युवा संवाद विकसित राजस्थान 2047 कार्यक्रम में युवाओं से रूबरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम बीकानेर के जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान में रखा गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बीकानेर को 5 ई बसों की सौगात भी दी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रदेश के लिए 12,112 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। श्री शाह प्रदेश के किसानों को किसान सम्मान निधि की 667 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 152 करोड़ रुपए की राशि सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री 10,500 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वे अलवर और चित्तौड़गढ़ जिलों में भी विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रदेश भर में आज हरियाली तीज का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सावन के पवित्र महीने की तीज को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। तीज पर मेहंदी लगाने, झूला झूलने और लोक गीतों का भी विशेष महत्व है। कई स्थानों पर मेले भी भरते हैं। पर्यटन विभाग की ओर से राजधानी जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाएगी। शाही

0: लवाजमे के साथ जनानी ड्योढ़ी से ये सवारी निकलेगी। इसके लिए प्रशासन ने यातायात के विशेष प्रबंध किए हैं। रामदेवरा मेले में यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने चार जोड़ी मेला स्पेशल रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। इनमें भगत की कोठी रामदेवरा के बीच तीन जोड़ी तथा श्रीगंगानगर पोकरण के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन शामिल है। भगत की कोठी रामदेवरा मेला स्पेशल 28 अगस्त से 25 सितंबर तक चलेगी। जोधपुर, राई का बाग, मंडोर, मारवाड़, मथानिया, तिवरी, ओसिया, मारवाड़, लोहावट और फलोदी में इस ट्रेन का ठहराव रहेगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 18 अगस्त तक राज्य के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस बीच पिछले 24 घंटों में धौलपुर जिले में भारी बारिश हुई। वहीं अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, डीग, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और सिरोही सहित अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 14 सेंटीमीटर बरसात जोधपुर के बाड़ी में रिकॉर्ड हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब बहनें सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मंजू शर्मा।

सभी श्रोताओं भारतीयों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश मना रहा है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। यह केवल राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि उन लाखों वीर सपूतों के त्याग, बलिदान और संघर्ष का पावन स्मरण है जिन्होंने हमें स्वतंत्र भारत का अमूल्य उपहार दिया। भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन के अधीन रहा। इस दौरान देशवासियों ने अनेक कठिनाइयां झेली, लेकिन भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला कभी शांत नहीं हुई। सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। इसके बाद अनेक क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर पूरे देश को एकजुट किया। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता की लड़ाई को नई दिशा दी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और सब असंख्य ज्ञात अज्ञात सेनानियों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके त्याग का परिणाम था कि 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना।

बहनों, क्या केवल विदेशी शासन से मुक्त होना ही स्वतंत्रता है? नहीं, सच्ची स्वतंत्रता तब है जब समाज से अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार, भेदभाव और हिंसा और अंधविश्वास समाप्त हों, जब प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिले, हर बेटी सुरक्षित हो, हर युवा को शिक्षा और रोजगार मिले तथा हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करे। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने भी अद्भुत साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी जैसी अनेक वीरांगनाओं ने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी महिलाएं हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। भारत की विविधता में एकता सबसे बड़ी शक्ति है। स्वतंत्र भारत के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना होगा। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे

प्रयास देश को नई दिशा दे रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम उन सभी अमर शहीदों को नमन करें जिनके बलिदान के कारण हम स्वतंत्र भारत में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आइए पूरे उत्साह और गर्व के साथ एक स्वर में कहें, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।

0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
5: बहनों, सावन का नाम लेते ही मन में कैसी तस्वीर उभरती है? चारों ओर फैली हरी भरी प्रकृति, पेड़ों की डालियों पर पड़े रंग बिरंगे झूले, झूला झूलती युवतियां, हाथों में रची मेहंदी, हरी चूड़ियों की खनक और वातावरण में गूंजते सावन के गीत। सावन की इसी मनमोहक ऋतु में आता है हरियाली तीज का पर्व, जो भारतीय लोक जीवन, धार्मिक आस्था, प्रकृति प्रेम और पारिवारिक रिश्तों का सुंदर संगम है। तो आइए, आज की इस विशेष रेडियो यात्रा में हम चलते हैं उन गलियों और आंगनों की ओर, जहाँ कभी सावन के झूले पूरे गांव की खुशियों का केंद्र हुआ करते थे। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। वर्षा ऋतु के बीच आने वाला ये पर्व चारों ओर हरियाली के कारण हरियाली तीज कहलाता है। इस समय वर्षा से धरती का रूप बदल जाता है, सूखी धरती हरी चादर ओढ़ लेती है, खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं, गाँवों में पेड़ों की मजबूत डालियों पर रस्सियों के झूले डाले जाते हैं, बच्चे युवतियाँ और महिलाएं झूला झूलने के लिए एकत्र होते हैं। सावन की रिमझिम फुहार में लोकगीतों की मधुर धुन सुनने को मिलती है।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देख।

0: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
0: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

मैनू, अंतराल से पहले हम बात कर रहे थे हरियाली तीज पर। तो हरियाली तीज पर हरे रंग का विशेष महत्व होता है। महिलाएं हरे रंग की साड़ियां, लहरिया या पारंपरिक परिधान पहनती हैं, हाथों में हरी चूड़ियां पहनती हैं और मेहंदी रचाती हैं। राजस्थान में तीज का पर्व विशेष उल्लास के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से जयपुर की तीज से जुड़ी शोभा यात्रा और पारंपरिक आयोजन लोगों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। आज चाहे समय बदल गया है, मोबाइल और डिजिटल मनोरंजन ने पारंपरिक सामूहिक गतिविधियों की जगह ले ली है, लेकिन अच्छी बात ये है कि आज भी अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों, महिला संगठनों और सांस्कृतिक संस्थाओं में तीज के अवसर पर झूला उत्सव, मेहंदी प्रतियोगिताएं, लोकगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक परिधान प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। बहनों, हरियाली तीज का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है, प्रकृति की रक्षा का संदेश। यदि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तभी हरियाली होगी, तभी हम अपने तीज त्यौहार अच्छे से मना पाएंगे। आज आवश्यकता है कि हम इन त्यौहारों के पीछे छुपे मूल्यों से अपने बच्चों और युवाओं को परिचित करवाएं, उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़कर रख पाएं और इस सुहाने मौसम को अपनी यादों में संजो कर रख पाएं।

0: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे

0: पढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-22233।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420-22233 पर कॉल करें।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
0: अप टू 85% LTV के साथ अब मनप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
0: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-22233।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420-22233 पर कॉल करें।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
0: अप टू 85% LTV के साथ अब मनप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
0: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-22233।
4: तो बहनों, चलिए अब हम याद करते हैं अपने बचपन के 15 अगस्त को। 15 अगस्त का दिन वैसे तो हर भारतीय के लिए गर्व और उत्साह से भरा होता है, लेकिन जब हम अपने बचपन को याद करते हैं ना, तो ये दिन और भी खास लगने लगता है। सुबह सुबह स्कूल जाना, सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनना, हाथ में छोटा सा तिरंगा लेना और देशभक्ति के गीतों की गूंज के बीच उत्सव में शामिल होना, ये सब यादें आज भी दिल को रोमांचित कर देती हैं। तो आइए आगे हम बात करें कि हम अपने बचपन के 15 अगस्त की सुनहरी यादों को किस प्रकार संजोए हुए हैं। जैसे ही 15 अगस्त का महीना आता था, स्कूलों में तैयारियां शुरू हो जाती थीं, कक्षाओं को सजाया जाता था तिरंगे के रंगों से, दीवारें रंगीन हो उठती थीं और हर बच्चे के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई देती थी। सुबह जल्दी उठकर तैयार होना, हाथ में झंडा लेकर स्कूल पहुँचना और वंदे मातरम तथा जन गण मन की धुन सुनना, ये सब अलग ही अनुभव होता था।

0: या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: बहनों, बचपन के 15 अगस्त का उनकी यादों का सिलसिला चल रहा था, तो तब सबसे खास पल होता था तिरंगा फहराना। जैसे ही प्रधानाचार्य जी झंडा फहराते थे, पूरा मैदान भारत माता की जय के नारों के गूंज उठता था। हवा में लहराता तिरंगा हमें देश के प्रति गर्व और सम्मान का एहसास कराता था। उस समय हर बच्चा अपने आप को देश का सच्चा सिपाही महसूस करता था। 15 अगस्त की परेड बच्चों के लिए सबसे रोमांचक हिस्सा होती थी। लाइन में खड़े होकर कदम से कदम मिलाकर चलना, लेफ्ट राइट की आवाज़ पर तालमेल बनाना और पूरे अनुशासन के साथ मार्च करना, ये सब हमें एकता और अनुशासन का महत्व सिखाता था। कई बच्चे स्काउट्स, गाइड्स या NCC की वर्दी में परेड में हिस्सा लेते थे, जिससे उनका उत्साह और भी बढ़ जाता था। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा देशभक्ति के गीतों पर डांस, नाटक और भाषण प्रतियोगिताएं भी होती थीं। और बहनों, 15 अगस्त का एक और खास आकर्षण होता था लड्डू। लड्डू पाकर सभी बच्चों के चेहरों पर अलग ही खुशी आ जाती थी। ये छोटा सा लड्डू उस दिन की खुशी और यादों का प्रतीक बन जाता था। चलिए आज फिर बचपन की मीठी यादों के साथ ये संकल्प लें कि हम अपने देश की एकता और अखंडता को हमेशा बनाए रखेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।

0: समुद्र तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें PM विश्वकर्मा योजना के कारीगर, PM मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, PM स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्र ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
3: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गयी, जिनमें PM सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल RN रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और

0: उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
1: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
2: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहां आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
3: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रूवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसीना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वाले और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब

0: मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दिन के 2:30 हुए हैं। अब श्रोता सुने फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं ये गीत, फूल बने अंगारे। ये है फिल्म का नाम। आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

आइए अब सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है मेरी जंग, आवाज दी है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने, आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हो आकाशवाणी के कॉटन श्री चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुनते हैं रोजा, इस फिल्म का ये गीत।

आइए अब सुनते हैं ये गीत, जिस देश में गंगा बहती है। इस फिल्म का ये गीत आवाज दी है मुकेश ने। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत शंकर जय किशन का है।

326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर FM 100.1 मेगाहर्ट्स। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम मीडियम वेव के साथ साथ FM पर भी, इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। दिन के 3 बजे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारी उर्दू सर्विस के कार्यक्रम।

सामिन आपको बता दें फिर कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर सुनिएगा फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे हिंदुस्तान के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर मुनक़िदा लाल किले पर आज़ादी की तकरीबात की रेडियो रिपोर्ट। 4 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप मुदम्मर से खबरें सुनिए। मुल्क आज अपना 80वां योम आज़ादी जोश व खरोश के साथ मना रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर कौमी परचम फहराकर मुल्क की योम आज़ादी तकरीबात की क़यादत की। वंदे मातरम पहली मरतबा लाल किले में गाया गया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में गरीब और मुतवस्सित तबके के कुम्मों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया और कहा कि अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई ज़हानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। जनाब मोदी ने बाज़ मुल्कों की जानिब से अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए वसाइल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशों पर तश्वीश का इजहार किया। उन्होंने इस चैलेंज का सामना करने के लिए भारत की आत्मनिर्भरता के जज्बे को सराहा। बैरून मुल्क मौजूद भारतीय सफारती मिशनों ने भी हुबुल वतनी के जज्बे के साथ योम आज़ादी मनाया और इंडोनेशिया के मशरकी साहली इलाके में 7.7 शिद्दत का जल्जला आने से कम 20 अफराद हलाक हो गए। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज 80वां योम आज़ादी मना रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने दिल्ली में तारीखी लाल किले से योम आज़ादी की तकरीबात की क़यादत की। वहां पहुंचने पर पहली बार कौमी गीत वंदे मातरम बजाया गया, कौमी परचम लहराया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई और फ़ज़ाइया के MI-17 हेलीकॉप्टरों ने फूलों की पत्तियाँ बरसाईं। इस साल की तकरीबात में युवा शक्ति की अहमियत को तस्लीम और उजागर किया गया, जो 2047 में विकसित भारत बनाने में एक अहम किरदार अदा करेगी। लाल किले की फसील से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने वंदे मातरम गाए जाने को एक तारीखी लम्हा करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क नए जोश व खरोश और जज्बे के साथ तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म की तकरीर के अख्तिताम पर NCC कैडेट्स और माई भारत के रजाकारों ने कौमी गीत वंदे मातरम गाया, जिसके बाद कौमी तराना पेश किया गया। तकरीबात में बर्री फौज, बहरिया और फदाइया के कुल 2500 लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल कैडेट्स और माई भारत के अदाकारों ने शिरकत की। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5000 खसूसी मेहमानों ने योम आज़ादी की तकरीबात का मुशाहदा किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों अफराद ने अपने अज़्म मुसम्मम और लगन के साथ मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में हासिल की गई तरक्की का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले 12 साल के दौरान दिफाई पैदावार में लगभग 4 गुना, खादी और गाँव की सनतों की पैदावार में लगभग 5 गुना, बिजली के साजो सामान की तैयारी में तकरीबन 7 गुना, रेलवे के जदीद डब्बे बनाने की तैयारी में 21 गुना और मोबाइल फोन बनाने में तकरीबन 33 गुना का इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म मोदी ने मुख्तलिफ पब्लिक इम्तहानात के लिए मुतवस्सित तबके के कुम्भों और गरीब उम्मीदवारों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये काबिल और चोटी के असातिज़ा की रहनुमाई में मेयारी तालीम की रसाई के लिए एक इनकलाबी कदम है। उन्होंने कहा कि इस तरह कोचिंग में खर्च होने वाला मुतवस्सित तबके के कुम्भों का करोड़ों रुपया बचेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि अगले 1 साल के दौरान 1 करोड़ नौजवानों को AI हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह ये नौजवान AI के आलमी शोबे में कायदाना रोल अदा कर सकेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को लागत, मेयार और हुनर पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत ने 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क का मकसद हासिल करने के लिए पेशकदमी करते हुए ऐसे बहुत से बहरानों पर कामयाबी से काबू पाया है जिनकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने इस सिलसिले में COVID-19 की वबा, यूक्रेन और मग़रबी एशिया के तनाज़े का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त हर मुल्क ने अपने मफादात की तकमील और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया, लेकिन बदकिस्मती से बहरान की उस घड़ी में भी कुछ मुल्कों ने अपनी बालादस्ती कायम करने की गरज से अपने वसाइल का हथियारों के तौर पर इस्तेमाल किया, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या कीमियावी खाद। बैरूनी मुल्कों में वाक़ भारत के सफारतखानों और कौंसल खाने से भी इस मौके पर परचम लहराने, सकाफती प्रोग्रामों और दूसरे इज्तिमाही प्रोग्रामों की खबरें मौसूल हो रही हैं। सिंगापुर, चीन और हांगकांग में हज़ारों भारतीय बाशिंदे और उनके अरकान ख़ानदान योम आज़ादी की तकरीब में शामिल हुए। उन्होंने खित्ते में अवाम के साथ भारत के मजबूत ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर शिल्पक अम्बोले ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर 2500 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। इस तकरीब के दौरान कौमी तराना, हुब्बुल वतनी के नगमे और वंदे मातरम पेश किया गया। इसके अलावा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तकरीर के इक्तबासात

पढ़कर सुनाए गए। बीजिंग में भारत के सफीर विक्रम दुराई सामी ने मूसलाधार बारिश के बावजूद भारत के सफारतखाने में तिरंगा लहराया और वहां बड़ी तादाद में भारतीय बाशिंदे मौजूद थे। बाद में उन्होंने मोहतरमा मुर्मू की तकरीर पढ़कर सुनाई और यौम आज़ादी के मुकाबले में कामयाब होने वालों को इनामात पेश किए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर से भी मरकज के पूरे ज़ेर इंतज़ाम इलाके में 80वां यौम आज़ादी मनाए जाने की खबरें मौसूल हुई हैं। वहाँ हुब्बुल वतनी के नामे गाए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा लहराया और यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बख्शी स्टेडियम में कौमी झंडा लहराया और परेड से सलामी ली। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सूरत हाल अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 80 साल बाद भारत का हिस्सा बने रहने का फैसला सही साबित हो गया है। वज़ीर आला ने कहा कि जमहूरियत और वफाकियत खुशहाली और तरक्की के सबसे ज़्यादा मजबूत सुतून हैं। इसी दौरान मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के तमाम ज़िला सदर मकामात पर इस तरह की तकरीबात हुईं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें यौम आज़ादी के मौके पर कौमी जंगी यादगार पर बहादुर सिपाहियों को खिराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया ने कौमी जंगी यादगार पर गुलहाय अकीदत पेश की और शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दिफा के वजीर ममलकत संजय सेठ, दिफाई अमले के सरबराह जनरल एनएस राजा सुरमानी, बर्री फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ, बहरिया के सरबराह एडमिरल कृष्ण स्वामी नाथन, फजाइया के सरबराह चीफ मार्शल अमृत प्रीत सिंह और दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में 80वां यौम आज़ादी जोश व खरोश और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आला विष्णुदेव साई ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुनाक़िदा तकरीब में कौमी परचम फहराया और परेड की सलामी ली। यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मोदी की दिलेर क़्यादत और वज़ीर दाखिला अमित शाह के पुख्ता अज़्म की बदौलत नक्सलिज़म के ख़िलाफ़ जंग में तारीखी कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर जो अब मामनवाज़ों से पाक हो चुका है, तिरंगा यात्रा के ज़रिए आज़ादी का जश्न मना रहा है। वो इलाके जो कभी तशद्दुद और खौफ से मुतासिर थे, अब अमन, एतमाद और तरक्की की नई सुबह देख रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बस्तर की हमाजह तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बस्तर डिवीज़न के तकरीबन 90 गांव जो कभी मामनवाज़ों के तशद्दुद से मुतासिर थे और अब नक्सलिज़म से आज़ाद हो चुके हैं, आज़ादी के बाद पहली मरतबा यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहरा रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वज़ीर आज़म ने मोदी ने पारसियों के नए साल नौरोज़ के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर नायब सदर जमहूरिया ने दुआ की कि नया साल हर ख़ानदान के लिए अमन, खुशहाली और खुशियां लेकर आए और मुल्क में इत्तेहाद और भाईचारे के रिश्तों को मजबूत करने के लिए सभी को हौसला दे। जनाब मोदी ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि पारसी बिरादरी के ने मुख्तलिफ शोबों में अपनी नुमाया खिदमात के ज़रिए मुल्क को बेशुमार तरीक़ों से मालामाल किया है। इंडोनेशिया के फ्लोरेस इलाके के करीब आज सुबह 7.7 शिद्दत का जलजला आया, जिसके नतीजे में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए। जलजले के बाइस इमारतें मुनहदिम हो गईं, मिट्टी के तोदे खिसकने के कई वाक़ात पेश आए और बड़े पैमाने पर खौफ व हरास फैल गया। 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं जबकि 2 लोग लापता हैं। जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी की गई, जिसे सतह समंदर में कोई खास तब्दीली नजर न आने के बाद वापस ले लिया गया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मुल्क आज अपना 80वां यौम आज़ादी जोश व खरोश के साथ मना रहा है। वज़ीर आज़म ने मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर कौमी परचम फहराकर मुल्क की यौम आज़ादी तकरीबात की क़यादत की। वंदे मातरम पहली मरतबा लाल किले में गाया गया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में गरीब और मुतवस्सित तबके के कुंबों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया और अगले 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई ज़हानत AI की तरबियत की फराहमी का भी ऐलान किया। जनाब मोदी ने बाल मालिक की जानिब से अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए वसाइल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस चैलेंज का सामना करने के लिए भारत की आत्मनिर्भरता के जज्बे को सराहा। बैरून मुल्क मौजूद भारतीय सिफारती मिशनों ने भी हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ यौम आज़ादी मनाया और इंडोनेशिया के मशरकी साहिल इलाके में 7.7 शिद्दत का जलजला आने से कम 20

यकीनन हिंदुस्तान हमारा है और हम सब का है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और यकीनन ये बात भी हमारे सब के जहनों में अच्छी तरह से आया है, अच्छी तरह से रोशन है कि अगर हम आपस में तफरका फैलाएंगे, आपस में लड़ेंगे तो वतन जो है इसकी खैर नहीं होगी। हम सब इसीलिए इतिहास से, मोहब्बत से, यगानगत के साथ सदियों से रहते चले आए हैं शीर व शकर की तरह।

0: सामिन स्नेह के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है 80वें यौम आज़ादी के जश्न के मौके पर लाल किले पर मुनक़िदा तकरीब की ये खुसूसी रेडियो रिपोर्ट।
1: सामिन की खिदमत में मेजबान नईम का आदाब और आप सभी को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद। 15 अगस्त 1947 का दिन हमारी तारीख का एक यादगार और नुमाया अहमियत का हामिल दिन है दोस्तों। इस दिन हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी की सांस ली और एक नई सुबह का आगाज हुआ। आज हम यौम आजादी की 80वीं सालगिरह और जश्न आजादी मना रहे हैं और उन तमाम शहीदों और मुजाहिदीन आजादी को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमें आजादी की नेमत से सरफराज किया। यौम आजादी पर जश्न आजादी की पुरवकार तकरीब दिल्ली के तारीखी लाल किले पर मुनक्किद होती है जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क के जीवकार सियासी और सामाजिक शख्सियात शिरकत करती हैं।
2: वजीर आजम की लाल किले आमद पर पहली मरतबा वंदे मातरम की धुन बजाई गई। वजीर आजम ने परचम कुशाई की और उसके बाद कौमी तराना गाया गया। परचम कुशाई के दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई

is sponsored. Gracias, Lord.

0: हर प्रकार से प्रयास, मैं उनके इस प्रयासों का आदर पूर्वक स्वीकार करता हूं और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: खेलों से मुतालिक भारत के तआवुन और मुस्तकबिल का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा,
0: मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्र गीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता की है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसके सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक के खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत दो तिहाई खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान है, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, हम बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
1: मुख्तलिफ शोबों में अहम हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा,
0: मेरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर, इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए, पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की

नहीं हो सकती। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत

0: देशवासियों,
1: लेकिन उसके लिए
0: आत्मविश्वास की जरूरत होती है,
1: आत्मगौरव की जरूरत होती है
0: और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में
1: हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को
0: हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए,
1: हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है।
0: और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है,
1: अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है।
0: और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।
2: बैन अल-अक़वामी तिजारती मुआहदे के हवाले से जनाब मोदी ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया।
0: 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है।
1: ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं मेरे MSMEs को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है, दुनिया में हमें पहुंचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है।
2: तवानाई की अहमियत पर जोर डालते हुए वजीर आजम ने फरमाया,
1: अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, AI हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 GW न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
2: मसनू जहानत के मुतालिक बात करते हुए जनाब मोदी ने फरमाया,
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूँ, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने, पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा।
2: सप्त धारा का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा,
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूँ, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने, पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा।
2: अपने खिताब के इख्तितामी में नौजवानों से ख्वाब की ताबीर के लिए

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश महेंद्र कपूर और साथियों को सुनिए। फिल्म है पूरब और पश्चिम। नगमा निगार इंदिवर, मौसीकार कल्याण जी।

आप सुन रहे थे वीर जवान फिल्म का नगमा, आवाज़ें थी रोहन रॉबिन और सुरेखा रॉबिन की। और सामिन जी, जब सुनी प्रोग्राम की अगली पेशकश, मनाडे मोहम्मद रफी और साथियों को फिल्म प्रेम पुजारी, मौसीकार हैं एस डी बर्मन।

और शामिली जब सुनिए मुकेश की आवाज़ में श्री 420 फिल्म के नगमा, नगमा निगार शैलेंद्र, मौसीकार शंकर जयकिशन।

कृष्णा कल्ले और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म थी क्वारी। और समझ लीजिए, अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में बूट पॉलिश फिल्म का ये नगमा।

डॉक्टरों ने फूलों की पत्तियां बरसाई। इस साल की तकरीबात में युवा शक्ति की अहमियत को तस्लीम और उजागर किया गया, जो 2047 में विकसित भारत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। लाल किले की फसील से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने वंदे मातरम गाए जाने को एक तारीखी लम्हा करार दिया। उन्होंने कहा है कि मुल्क नए जोशो खरोश और जज्बे के साथ तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आमद के बाद फौज की तीनों शाखों और दिल्ली पुलिस के मुश्तरक गार्ड्स ने उन्हें सलामी दी। कौमी परचम फहराने के बाद भारतीय फदाइया के दो MI-17 हेलीकॉप्टरों ने तकरीब के मकाम पर फूल बरसाए। इनमें से एक हेलीकॉप्टर ने कौमी परचम जबकि दूसरे ने वंदे मातरम की अक्कासी करने वाला परचम उठा रखा था। वज़ीर आज़म की तकरीब के अख्तिताम पर NCC कैडेट्स और माई भारत के रजाकारों ने कौमी गीत वंदे मातरम गाया, जिसके बाद कौमी तराना पेश किया गया। तकरीबात में बर्री फौज, बहरिया और फजाइया के कुल 2500 लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल कैडेट्स और माई भारत के रजाकारों ने शिरकत की। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5000 खसूसी मेहमानों ने योम आज़ादी की तकरीबात का मुशाहिदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ पब्लिक इम्तहानात के लिए मुतवस्सित तबके के कुंबों और गरीब उम्मीदवारों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये काबिल और चोटी के असातिज़ा की रहनुमाई में मेयारी तालीम की रसाई के लिए एक इनकलाबी कदम है। उन्होंने कहा कि इस तरह कोचिंग में खर्च होने वाला मुतवस्सित तबके के कुंबों का करोड़ों रुपया बचेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि अगले एक साल के दौरान 1 करोड़ नौजवानों को AI हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस तरह ये नौजवान AI के आलमी शोबे में कायदाना किरदार अदा कर सकेंगे। जनाब मोदी ने कहा है कि मुल्क को लागत, मेयार और हुनर पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क का मकसद हासिल करने के लिए पेशकदमी करते हुए ऐसे बहुत से बहरानों पर कामयाबी से काबू पाया है जिनकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने इस सिलसिले में कोविड-19 की वबा, यूक्रेन और मगरबी एशिया के तनाज़े का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त मुल्क ने अपने मफादात की तकमील और उसके तहफ्फुज़ के लिए काम किया, लेकिन बदकिस्मती से बहरान की उस घड़ी में भी कुछ मुल्कों ने अपनी बालादस्ती कायम करने की गरज से अपने वसाइल का हथियारों के तौर पर इस्तेमाल किया, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल या हो कीमियावी खाद हो। उन्होंने इस चैलेंज का सामना करने के लिए भारत की आत्मनिर्भरता के जज्बे को सराहा। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों अफराद ने अपने अज़्म मुसम्मम और लगन के साथ मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में हासिल की गई तरक्की का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले 12 साल के दौरान दिफाई पैदावार में लगभग 4 गुना, खादी और गांव की सनातों की पैदावार में लगभग 5 गुना, बिजली के साजो सामान की तैयारी में तकरीबन 7 गुना, रेलवे के जदीद डिब्बे बनाने की तैयारी में 21 गुना और मोबाइल फोन बनाने में तकरीबन 33 गुना का इजाफा हुआ। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें योम आज़ादी के मौके पर कौमी जंगी यादगार पर बहादुर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरियत ने कौमी जंगी यादगार पर गुलहाय अकीदत नजर किए और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दिफा के वजीर ममलकत संजय सेठ, दिफाई अमले के सरबराह जनरल NS राजा सुब्रमणी, बर्री फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ, बहरिया के सरबराह एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, फदाइया के सरबराह चीफ मार्शल अमृतप्रीत सिंह और दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह भी मौजूद थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पारसियों के नए साल नवरोज़ के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर नायब सदर जमहूरिया ने दुआ की कि यह नया साल हर ख़ानदान के लिए अमन, खुशहाली और खुशियां लेकर आए और मुल्क में इत्तेहाद और भाईचारे के रिश्तों को मजबूत करने के लिए सभी को हौसला दे। जनाब मोदी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि पारसी बिरादरी ने मुख्तलिफ शोबों में अपनी नुमाया खिदमात के जरिए मुल्क को बेशुमार तरीकों से मालामाल किया है। बैरूनी मुल्कों में वाक़ भारत के सफारतखानों और कौंसिल खानों से भी इस मौके पर परचम लहराने, सकाफती प्रोग्राम

युववाणी सुनने वाले सभी साथियों को करण वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन केवल उत्सव का दिन नहीं है, जबकि उन अनगिनत वीरों के त्याग, संघर्ष और बलिदान को स्मरण करने का अवसर है, जिनके प्रयासों से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। भारत हमारा प्यारा देश है। यहाँ अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हर वर्ष 15 अगस्त यानी आज ही के दिन हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमारे भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। श्रोताओं, भारत को

आज़ाद कराने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई और अनेक वीरों ने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके त्याग और संघर्ष के कारण ही हमें स्वतंत्र भारत में रहने का अवसर मिला है। साथियों, स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरे देश में उत्साह और देशभक्ति का वातावरण बना रहता है। विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नई दिल्ली में इस दिन लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। वे देश की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य के योजनाओं के बारे में बताते हैं। पूरे देश में लोग तिरंगे का सम्मान करते हैं और देश की एकता व अखंडता बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। मित्रों, स्वतंत्रता केवल विदेशी शासन से मुक्ति का नाम नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब देश का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे। हमें अपने देश के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। हमें जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी के साथ प्रेम और समानता का व्यवहार रखना चाहिए, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। तो श्रोताओं, आज़ादी के इस अवसर पर बातें और भी करेंगे। आइए पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
4: दोस्तों, किसी कवि ने क्या खूब कहा है, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यहीं कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूँगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ अब फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं हूँ मैं, अपने ही

अथो रचा स्वयं हूँ मैं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो श्रोताओं, हमें हमेशा बाधाओं से कभी नहीं घबराना चाहिए, हमेशा डट कर उनका मुकाबला करना चाहिए। चर्चा और भी करेंगे, अब समय एक गीत का है, लीजिए सुनिए फिल्म घर का ये गीत।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी

0: भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: दोस्तों, कहते हैं कि चैंपियन सिर्फ मैदान में नहीं बनते, चैंपियन उन हालातों में बनते हैं जहां हार मान लेना सबसे आसान होता है। जब जेब खाली हो, रास्ता मुश्किल हो, लेकिन दिल में सिर्फ एक सपना हो, तब इतिहास लिखा जाता है। ऐसी ही कहानी है भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू की। एक ऐसी बेटी जिसने गरीबी देखी, संघर्ष देखा, कई बार भूखे पेट ट्रेनिंग की, लेकिन अपने सपने से समझौता नहीं किया। अब उन्होंने एक बार फिर पूरी दुनिया को बता दिया है कि इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। श्रोताओं, इन्होंने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश को गर्व महसूस कराया। सन 2018 की गोल्ड कोस्ट से शुरू हुआ गोल्ड का सफ़र सन 2022 के बरमेगा तक पहुंचा और अब ग्लासगो में भी स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई चानू ने अपनी बादशाहत कायम रखी। लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली वो भारत की सफल वेट लिफ्टर में शामिल हो गई। लेकिन इस जीत के पीछे सिर्फ मेडल नहीं है, इसके पीछे है सालों का संघर्ष, दर्द, मेहनत और कभी हार ना मानने वाला जज्बा। साथियों, मीराबाई चानू का जन्म साल 1994 में मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले के छोटे से गांव में हुआ था। ये अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। इनका परिवार काफ़ी साधारण था। इनके पिता लोक निर्माण विभाग में कम वेतन पर मजदूरी करते थे और इनकी माता गांव में चाय व समोसे की छोटी सी दुकान चलाती थी। 8 लोगों के परिवार को चलाना बहुत मुश्किल था। ऐसे परिवार में खेल का सपना देखना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन मीराबाई ने यही सपना देखा और उसे पूरा करने की ठान ली। घर की आर्थिक हालत इतनी कमज़ोर थी कि कई बार सही खाना तक नसीब नहीं होता था। वेटलिफ्टिंग जैसे खेल में शरीर को मजबूत रखने के लिए प्रोटीन से भरपूर डाइट की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसे भी दिन आए जब ये पानी पीकर ट्रेनिंग के लिए निकल जाती थी। वास्तव में इनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल हो, लेकिन इरादे मजबूत हो तो मंजिल ज़रूर मिलती है। तो मित्रों, बातें और भी करेंगे युववाणी कार्यक्रम में, बातें तो चलती रहेगी, लेकिन अब चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म मेरी जंग का ये गीत।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
5: दोस्तों आइए अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। श्रोताओं, ग्लोबल वार्मिंग आज दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। इसके कारण पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ये समस्या मुख्य रूप से मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है, जिसे पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। साथियों, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा का बढ़ना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी के चारों ओर रोक लेती है। ये गैसें वाहन, कारखानों, बिजली संयंत्रों, वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न होती है। मित्रों, ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव अत्यंत गंभीर है। इससे हिमनद पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और मौसम में असामान्य परिवर्तन हो रहे हैं। कहीं अत्यधिक गर्मी तो कहीं भारी वर्षा और कहीं सूखा देखने को मिल रहा है। इसका प्रभाव कृषि, जल संसाधन, वन्य जीवन और मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना होगा, वाहनों का प्रयोग कम करना होगा और ऊर्जा की बचत करना भी आवश्यक होगा। साथ ही सभी में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अंत में कहा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग केवल एक देश की समस्या नहीं है, जबकि पूरे विश्व की चुनौती है। यदि हम समय रहते इसके प्रति सजग नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए हमें मिलकर पृथ्वी को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओं, चर्चा और भी करेंगे युववाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए। आइए एक बार फिर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म फूल और कांटे का ये गीत।

0: फ्लैट पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: दोस्तों।

आज है स्वतंत्रता दिवस। इस दिवस पर आइए अब बात करते हैं पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के उन वीरों की, जैसे वीर शहीद रोहितास लांभा। श्रोताओं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान रोहितास लांभा जयपुर जिले के अमरसर थाना इलाके के गांव गोविंदपुरा बासड़ी के रहने वाले थे। इनकी शादी मृत्यु से एक वर्ष पूर्व और 2 माह पूर्व संतान हुई थी। नवागंतुक संतान को देखकर वे छुट्टियों से सेवा कार्य पर लौट रहे थे कि ये हमला हो गया और वे शहीद हो गए। वीर शहीद भागीरथ। मित्रों, पुलवामा हमले में शहीद भागीरथ धौलपुर जिले के दिहोली थाना इलाके के गांव जेतपुर के रहने वाले थे। वे 6 वर्षों से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 45वीं बटालियन में कार्यरत थे। 4 वर्ष पूर्व विवाहित भागीरथ के 3 साल का बेटा और 1.5 साल की बेटी है। ये भी छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे तब ये हमला हुआ जिसमें ये वीर शहीद हो गए। वीर शहीद नारायण लाल गुज्जर। साथियों, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद नारायण लाल गुज्जर राजसमंद जिले के बिनोल गांव के निवासी थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व इन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट कर कश्मीर के विपरीत हालातों में चुनौतीपूर्ण कार्यों को अंजाम देने के साहस को रेखांकित किया था। तो दोस्तों, राजस्थान के अन्य वीर शहीदों को जानने से पहले आइए सुनते हैं फिल्म गदर का ये गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: दोस्तों, हम बात कर रहे थे पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के उन वीरों की, जैसे जीतराम गुज्जर। श्रोताओं, पुलवामा हमले में राजस्थान के भरतपुर जिले के नगर तहसील के अंतर्गत गांव सुंदखाली के जवान जीतराम गुज्जर भी शहीद हो गए। जीतराम गुज्जर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 92वीं बटालियन में कार्यरत थे। 28 वर्षीय जीतराम गुज्जर के 1.5 साल और 4 माह की बेटी थी हेमराज मीणा। मित्रों, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हेमराज मीणा कोटा जिले की सांगोद तहसील के गांव विनोद खुर्द के रहने वाले थे। हेमराज मीणा 2 बेटों और 2 बेटियों के पिता थे और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात थे। साथियों, ये थे पुलवामा हमले में शहीद हमारे राज्य राजस्थान के वीर सपूत। हमारी राजस्थान सरकार ने एक ओर जहां पुलवामा में हुए आतंकी हमले की घोर निंदा की, वहीं दूसरी ओर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। तो दोस्तों, बातें तो चलती रहेगी, लेकिन अब समय एक गीत का है। आइए अब सुनते हैं फिल्म बॉर्डर का ये देशभक्ति गीत।

दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम के आखिर में आइए अब चलते चलते सुनते हैं फिल्म फना का ये गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम यहीं तक। अब अपने साथी करण वर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युवावाणी। हम आकाशवाणी के कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। शाम के 6 बजे हैं, अब सुने कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में पहले सुने जानकारी हमारे सभा के शेष प्रसारणों के संबंध में, अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सराय की किसान वाणी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से शाम 7:00। ग्रामीण परिवार सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम चौपाल शाम 7:30 पर वेद प्रकाश वर्मा के साथ। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज रात 8:00 आप सुनेंगे 80वें जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह की रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुतकर्ता नवीन सिसोदिया, तकनीकी सहयोग सोहनलाल, अन्य सहयोग मोहनलाल, आलेख और वाचन रोहिताश शर्मा का रहेगा। 8:15 पर आप सुनेंगे विशेष समाचार तरंग, जिसे हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कुछ गजलें आप सुनेंगे सुगम संगीत के अंतर्गत रात 9:15 पर।

रात 9:30 पर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम दिए गए संबोधन के एआई आधारित वॉइस क्लोनिंग संस्करण का प्रसारण उसकी अवधि की समाप्ति तक आपको सुनवाया जाएगा।

संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। ये थे हमारे सभा के शेष प्रसारण और उनका प्रसारण समय।

कार्यक्रम विवरण में सुने जानकारी हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:50 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे 6:10 पर। चिंतन के लिए समय रहेगा 6:45 का। 7:10 पर कार्यक्रम खेतिहारा वास्ते में किसान भाई सुनेंगे जानकारी पशुओं के लिए संतुलित आहार और उनका पोषण। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस पर आधारित गान पाठ मानस गान आप सुना करते हैं 7:20 पर। कल आप सुनेंगे इसकी 336वीं कड़ी। सुप्रभात, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। कल इस कार्यक्रम में एक भेंट वार्ता आपको सुनवाई जाएगी फिजियोथेरेपिस्ट वार्ताकार प्रकुल खत्री से नवीन सिसोदिया की बातचीत। सुगम संगीत आप सुनेंगे 8:45 पर। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम होगा मरुमंगल 9:10 पर। कलाकार होंगे प्रभु राम। 9:30 पर कुछ युगल गीत आप सुनेंगे फिल्म संगीत के अंतर्गत। आज के फनकार फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:00। 11:00 आपकी फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे दिन में 11:00। कुछ बातें कुछ गीत फिल्म संगीत पर ही आधारित ये कार्यक्रम आप सुना करते हैं 12:05 पर। सुगम संगीत 12:30 पर और 12:50 का समय रहेगा कार्यक्रम खेत खलिहान का। जानकारी का विषय रहेगा मृदा स्वास्थ्य के लिए जैविक खाद। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। अब सुने सराय की।

एहसान ना कहिंदा चा बाबा, कर कम ना कोई तू ए जा, कोई कढ़े ठड़े सा बाबा।

एक भी गजल पेशे। अधी तू भी अधी खावी, सिर ते अपने कर्ज न चावी, जग विच साडा माण वधावी, साकू भी कई लेखे लावी, साकू भी कई लेखे लावी। फिक्के टांडे देख चुपे से, दूजे दे घर हथ न पावी, ना हक दी रोटी विच रते हक हलाल दी रोटी खावी, ना हक दी रोटी विच रते हक हलाल दी रोटी खावी। तू भी साडा राखा रब्बा, तू ही साडा राखा रब्बा, हर मुश्किल विच आप बचावी, हर एक दे घर खुशियां वसन, हर एक दी तू आस पुजावी। कौन भरोसा करसी तैडा, कौन भरोसा करसी तैडा, जे तू कीती लावी चावी। बनी बनाई कम आंदी है, बनी बनाई कम आंदी है, देखना कहिंदे नाल वन्यावी। उच्चा झिक्का रस्ता देखी, उच्चा झिक्का रस्ता देखी, वल आजाद तू पैर वधावी, वल आजाद तू पैर वधावी। एक भी गजल पेशे भी सुनो। जे तू चलसे पुठी चाल, मुश्किल गलसा तैडी गाल, जे तू चलसे पुठी चाल, मुश्किल गलसा तैडी दाल, जे नहीं तैडे पल्ले माल, कोई ना पुछा तैडा हाल, गाल गाल ते कढ़न गाल, सब दे हन बिगड़े सुरताल, अगो पिछो कोई ना देखे, अगो पिछो कोई ना देखे, इत्थां ते ही भेदा चाल, अपने रंग विच रंग हिंदी है, ई दुनिया दा देख कमाल, ई दुनिया दा देख कमाल, जितने मुँह हैं उतने गाली, कहंदी कहंदी मन्ना गाल, जितने मुँह हैं उतने गाली, कहंदी कहंदी मन्ना गाल, देख तरकड़ी है बराबर, देख तरकड़ी है बराबर, अपनी करनी अपने नाल, दूजे कूजे मान न देसे, दूजे कूजे मान न देसे, बासे अपनी इज्जत गाल, ई दुनिया दे देख के चाले, और ई दुनिया दे देख के चाले, साड़ी है ही आजाद मजाल, साड़ी है ही आजाद मजाल। एक भी गजल। अपनी साख वन्यावी ना, अपनी साख वन्यावी ना, भुल के कसमा खावी ना, पुठे रस्ते पैर ना पावी, धिक्के धोड़े खावी ना, हक दी गाल जे पुछे बीबा, हक डू जेंदा खावी ना, रब को जिंदड़ी देवनी है, रब को जिंदड़ी देवनी है, देखी कूड़ कमावी ना, सच बोल के मरना चंगा, सच बोल के मरना चंगा, रब्बा झूठ अखवावी ना, घर तैडा भी सड़ न वंजे, घर तैडा भी सड़ न वंजे, बेघर लंबी लावी ना, रस्ता ते मिल वेसा तैकू, रस्ता ते मिल वेसा तैकू, मुश्किल विच घबरावी ना, अपना पटका देख संभाली, अपना पटका देख।

संभाली, दूजे दी पत लानी ना, कन ला के हर एक दी सुन, कहिंदी गाल वजावी ना, कहिंदी गाल वजावी ना। एक कथा पेशे, खोल के क्या क्या दसा हाल, ए बीबा ही मुकदी गाल, कहिंदे नाल ना गुजरे इवें, जिवें गुजरी साढ़े नाल, कहिंदे नाल ना गुजरे इवें, जिवें गुजरी साढ़े नाल। एक बिया कथा, हथ आवे कहिंदे क्यों दाढ़ी, हथ आवे कहिंदे क्यों दाढ़ी, रोटी जे होवे इज्जत दी, हुण तक ते कज्जा ही साकू, अगों भी रखी पत साडी, अगों भी रखी पत साडी। हुण एक गजल हाजिर है, झूठा क्या ते ताता थई, झूठा क्या ते ताता थई, सच बोलिया ते विपता पई, प्रेम

0: जनाब राधा किशन आजाद तेंदे नाल अज दा प्रोग्राम खत्म थींदे। ए प्रोग्राम तुहाकू किवें लगा अपने सुझाव ते विचार साकू जरूर भेजो। साडा पता है सेराइकी प्रोग्राम पोस्ट बॉक्स नंबर 500 ऑल इंडिया रेडियो पार्लियामेंट स्ट्रीट नवी दिल्ली 1100001। तुहाडे खत दा साकू इंतजार रहा।
1: अभी आप सुन रहे थे सरायकी आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की। प्रदेश भर में स्वाधीनता दिवस का उल्लास। बीकानेर में हुए राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, विकसित राजस्थान 2047 के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राज्य को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। और हरियाली तेज, आज राजधानी जयपुर में निकाली जा रही है तेज माता की शाही सवारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। श्रोताओं, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में कामयाब रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने कोविड महामारी, यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया संकट जैसी चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के नागरिक देवो भव सिद्धांत के कारण पिछले दशक में ऐसी व्यवस्थाएं की गई जो संकट काल में कारगर साबित हुई।

0: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इससे देश को एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 साल तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा और चुने गए बच्चों को अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत खेल की दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है और 2030 में भारत राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा।
0: स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती।
1: प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस कदम से बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा मिलने के साथ ही मध्यम वर्गीय परिवारों में कोचिंग पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए की बचत होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के सम्मान का विषय है।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: इधर प्रदेश भर में भी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस का उल्लास चरम पर रहा। स्वाधीनता दिवस का राज्यस्तरीय समारोह बीकानेर में आयोजित किया गया। करणी सिंह स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडारोहण किया। प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति और UPI पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
2: आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि 2047 में विकसित भारत का सपना साकार होगा। 2047 का राजस्थान भारत का अग्रणी राज्य होगा और जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा करेगा तब तिरंगा दुनिया के शिखर पर भारत के गौरव और सामर्थ्य और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर के लहरा रहा होगा।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर स्थित लोकभवन में झंडारोहण किया। इस मौके पर राज्यपाल ने युवाओं से संस्कार, अनुशासन और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विकसित राजस्थान के निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। राजधानी जयपुर में जिलास्तरीय समारोह चौगान स्टेडियम में हुआ। समारोह में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने ध्वजारोहण किया। इससे पहले उन्होंने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में ध्वज फहराया। साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। विभिन्न जिला मुख्यालयों पर हुए समारोह में मंत्रियों और जिला कलेक्टरों ने ध्वजारोहण किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अजमेर और उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने भीलवाड़ा में राष्ट्र ध्वज फहराया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी प्रदेश कार्यालय में झंडारोहण किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा आज बीकानेर में युवा संवाद विकसित राजस्थान 2047 कार्यक्रम में युवाओं से भी रूबरू हुए। जिले के जल विज्ञान और जल प्रबंधन संस्थान में हुए इस कार्यक्रम में श्री शर्मा ने कहा कि युवा शक्ति के विचार, नवाचार, कौशल और उद्यमिता विकसित प्रदेश के आधार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। इसके लिए राजस्थान युवा नीति सहित 36 नीतियां लाई गई हैं और स्टार्टअप तथा स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित की

0: किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रदेश के लिए 12,112 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज उदयपुर पहुंचेंगे और महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर श्री शाह की अगुवाई करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्तौड़गढ़ और अलवर जिलों में 1,877 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगी। किसानों को सम्मान निधि की 667 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 152 करोड़ रुपए की राशि किसानों के सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। श्री शाह 10,500 से ज्यादा अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके अलावा सरस डेयरी के 200 करोड़ रुपए के नए प्लांट का शिलान्यास और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह कल निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में 442 कार्यों का शिलान्यास और 502 कामों का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री निम्बाहेड़ा के अंबेडकर राजकीय कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। समाचार कक्ष से डॉक्टर ज्योति पारीक।
0: जयपुर में आज नारी शक्ति सम्मान उत्सव का आयोजन किया गया। सक्षम नारी, स्वस्थ बचपन और समृद्ध राजस्थान की थीम पर हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की स्वास्थ्य, सुरक्षा और पोषण पर जोर देना था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिनों को रक्षाबंधन का उपहार दिया। श्री शर्मा ने कहा कि महिलाएं बेहतर समाज और मजबूत राष्ट्र की नींव है और सरकार महिलाओं की बेहतर शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। प्रदेश भर में आज हरियाली तीज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महिलाओं के इस विशेष पर्व पर पर्यटन विभाग की ओर से राजधानी जयपुर में तीज माता की शाही सवारी निकाली जा रही है। बैंड बाजों और शाही लवाजमे के साथ जनानी ड्यूटी से निकली इस सवारी के लिए प्रशासन ने यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं। इसी कड़ी में कल बूढ़ी तीज की सवारी निकाली जाएगी। सावन के पवित्र महीने की तीज को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। तीज पर मेहंदी लगाने, झूला झूलने और लोक गीतों का भी विशेष महत्व है। प्रदेश में तेज बारिश का दौर कमजोर पड़ गया है। हालांकि कुछ स्थानों पर बरसात हुई है। सवाई माधोपुर में आज तेज बरसात हुई, जबकि राजधानी जयपुर में बादल छाए रहे। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राज्य में 18 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। जयपुर और भरतपुर संभाग के लिए बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई गई है। इससे प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में फिलहाल कमी रहने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की। प्रदेश भर में स्वाधीनता दिवस का उल्लास। बीकानेर में हुए राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, विकसित राजस्थान 2047 के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राज्य को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। और हरियाली तीज आज राजधानी जयपुर में निकाली जा रही है तीज माता की शाही सवारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से झालावाड़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज झालावाड़ में जिला स्तरीय समारोह राजकीय खेल संकुल में आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर परेड का निरीक्षण भी किया। इसके बाद पुलिस, होमगार्ड और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के दलों ने मार्च पास्ट किया। उसके बाद समारोह में राज्यपाल के संदेश का पठन किया गया तथा शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। साथ ही उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रतिभाओं को पुरस्कार और प्रशंसा पत्र दिए गए। इससे पहले जिला कलेक्टर ने शहीद निर्भय सिंह सिसोदिया और विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार पुलिस की ओर से विशेष पुलिस पराक्रम कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इसमें जवानों ने राइफल प्रदर्शन, विभिन्न प्रकार के पिरामिड बनाने, आग के गोलों से निकलने सहित साहसिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया। समारोह में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के करीब 1100 बच्चों ने सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन किया, वहीं 300 बालिकाओं ने सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिले के कालीसिंध बांध पर तिरंगे के रंगों से रोशनी की गई। रात के अंधेरे में केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से सजा बांध और जलाशय का नजारा देखते ही बना। इस आकर्षक नजारे को देखने के लिए शहरवासी उमड़ पड़े। इसी कड़ी में शहर का पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। जिला प्रशासन और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से आयोजित देशभक्ति सांस्कृतिक संध्या में जिले के विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों ने गीत, नृत्य और अभिनय के माध्यम से राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। प्रस्तुतियों के दौरान ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। जिले के झालरापाटन में पिछले दिनों फॉलो अप शहरी सेवा शिविर लगाया गया। इसमें सालों से लंबित 114 पट्टे वितरित किए गए। इनमें पुराने लंबित मामलों के साथ नए आवेदनों पर भी त्वरित कार्रवाई की गई। शिविर में जिला कलेक्टर ने लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन आमजन की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से भी आवेदन करने की अपील की जिन्होंने अभी तक पट्टे के लिए आवेदन नहीं किया है। पारंपरिक हस्तकरघा बुनाई कला को प्रोत्साहन देने और उत्कृष्ट बुनकरों को सम्मानित करने के उद्देश्य से पिछले दिनों जिला स्तरीय बुनकर पुरस्कार चयन समिति की बैठक हुई। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार किया गया और विभिन्न श्रेणियों में श्रेष्ठ उत्पादों का चयन भी किया गया। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि बुनकर पुरस्कार योजना के तहत कुल 9 आवेदनों के साथ उत्पाद प्राप्त हुए थे। चयन समिति ने सभी उत्पादों का गुणवत्ता, डिजाइन, पारंपरिक शिल्पकला और नवाचार के आधार पर परीक्षण कर विजेताओं का चयन किया है। पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा संचालित हाई रिस्क प्रेगनेंसी सघन मॉनिटरिंग अभियान शुरू किया गया। इसके तहत जिला कलेक्टर ने ग्राम रलायता में हाई रिस्क प्रेगनेंसी से चिन्हित गर्भवती महिला के घर पहुंचकर गोद भराई रस्म का शुभारंभ किया। जिले में वन्य जीवों के संरक्षण और अवैध शिकार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए वन विभाग ने सघन अभियान चलाया। अभियान के तहत वन विभाग की टीम ने जीवित तीतर, तोते, शिकार में प्रयुक्त फंदे, पिंजरे और एक मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। ये कार्रवाई वन विभाग की ओर से की गई है। जिले में मॉनसून के दौरान संभावित बाढ़, अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए और राहत बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। झालरापाटन स्थित गोमती सागर तालाब पर हुई इस मॉक ड्रिल में SDRF, NDRF और भारतीय सेना की ओर से जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने भाग लिया। इसी के साथ झालावाड़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंचा बगतरा प्रादेशिक समाचार।

पहली खास समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किलारी प्राचीरों देश ने संबोधित करया। प्रदेश भर में स्वाधीनता दिवस रो उमाव चरम माथे रियो। बीकानेर में विया राज्य थर्रा जलसा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कयो विकसित राजस्थान 2047 सारू सरकार बरोबर कोशिश में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काले प्रदेश रा दौरा माथे रहवेला। राज्य ने 12,112 करोड़ रुपया विकास कमारी सौगात देवेला।

0: पाल नौजवानों संस्कार अनुशासन राष्ट्रहित ने ठावी प्राथमिकता देवता विकसित राजस्थान बनावण में भागीदारी निभावण री अरज करी। राजधानी जयपुर में जिला थर रोजालसो चौगान स्टेडियम में व्यो जलसा में सैनिक कल्याण महकमा रा मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ध्वजारोहण करियो। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ने सलामी दी। इनू पहला वणा अमर जवान ज्योति माते पुष्प चक्र अर्पण करने शहीदा ने नमन करियो। जलसा में न्यारा न्यारा हल्का में ठावा काम करण वाला 37 प्रतिभावां रो सम्मानी करीजियो। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी विधानसभा में झंडारोहण करियो। साथ ही सगड़ा जिला मुख्यालय माथे ध्वज स्वतंत्रता दिवस जलसा पूर्ण मनाईजियो। न्यारा न्यारा जिला मुख्यालय माथे व्या जलसा में न्यारा न्यारा मंत्री ध्वजारोहण करियो। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद वेरवा भीलवाड़ा में राष्ट्रीय ध्वज फहरायो। कई जिला में जिला कलेक्टर ध्वजारोहण करियो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पार्टी प्रदेश दफ्तर में झंडारोहण करियो। वठई प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तिरंगो फहरायो। स्वतंत्रता दिवस रे मौके न्यारा न्यारा शैक्षणिक संस्थान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों रो आयोजन करीजियो। मुख्यमंत्री आज बीकानेर में युवा संवाद विकसित राजस्थान 2047 कार्यक्रम में नौजवाना सामी बतल करी। ओ कार्यक्रम जिला रा जल विज्ञान और जल प्रबंधन संस्थान में वियो। ई कार्यक्रम में श्री शर्मा कहो कि युवा शक्ति रा विचार नवाचार कौशल उद्यमिता विकसित प्रदेश रा आधार है। वना कहो कि सरकार रो लगस प्रदेश रा नौजवाना ने रोजगार मांगण वाला नहीं बल्कि रोजगार देवण वाला बनावण है। ई सारू राजस्थान युवा नीति समेत 36 नीतियां लाई जी है और स्टार्टअप और स्वरोजगार ने बढ़ावो दियो जावे। ई मौके मुख्यमंत्री बीकानेर ने 5 ई बसारी सौगाती दी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान माथे सुन सको हो। इनके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और ई बारा में फोटो और वीडियो देख सको हो। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह काले प्रदेश रा दौरा माथे रहेला। ई दौरान वे प्रदेश आरू 12,112 करोड़ रुपया रा विकास का मारी सौगाती देवेला। ई कड़ी में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज उदयपुर पूगेला और महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक पूग ने श्री शाह री अगुवाई करेला। एक रिपोर्ट।
1: आपरा प्रवास रे दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्तौड़गढ़ और अलवर जिला माए 1877 विकास कामारी नींव राखेला और लोकार्पण करेला। काश्तकारा ने सम्मान निधि री 667 करोड़ रुपया री रकम डीबीटी करेला। साथ है ई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे तहत 152 करोड़ रुपया री रकम सीधा बैंक खाता माए भेजी जाएला। श्री शाह 10,532 लोगों ने सरकारी नौकरी रा नियुक्ति पत्र सौंपेला। इनरे अलावा सरस डेयरी रा 200 करोड़ रुपया रा नुवा प्लांट री नींव राखेला और वाको मेडिकल कॉलेज रो लोकार्पण करण रो ई कार्यक्रम है। श्री शाह काले निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ माए 442 कामारी नींव राखेला और 502 कामारो लोकार्पण करेला। ई मौके केंद्रीय मंत्री निम्बाहेड़ा रा अंबेडकर राजकीय कॉलेज माए पहली रा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी री पुण्यतिथि माथे वारी मूर्त रो अनावरण करेला। समाचार कक्ष सु मैं डॉक्टर ज्योति पारीक।
0: स्वतंत्रता दिवस माथे जयपुर माए नारी शक्ति सम्मान उत्सव रो आयोजन करीजियो। सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान री थीम माथे विया ई कार्यक्रम रो मकसद महिला मरा स्वास्थ्य हिफाजत और पोषण माथे जोर देवण हो। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा विविध हल्का माए उत्कृष्ट काम करण वाली महिलाओं ने सम्मानित करिया। ई मौके वणा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं और साथीना ने रक्षाबंधन रा निजराणा दिया। कार्यक्रम माए महिला स्वास्थ्य जुड़ी पोथियां रो विमोचन करीजियो। ई मौके श्री शर्मा कहो कि महिलावां चोखा समाज और मजबूत देश री नींव है और सरकार महिलावां री अच्छी शिक्षा और सुविधावां ने मजबूत बनावण सारू प्रतिबद्ध है। जलसा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद री। प्रदेश में आज हरियाली तीज रो त्यौहार हरक और उमावरे साथ मनायो जावे। महिला मा रो ई खास त्यौहार मा

0: सैलानी महकमा कानियों राजधानी जयपुर में तीजरी सवारी निकाली जावे। बैंड बाजा अरसाई लवाजमारे साथ जनानी ड्योडियों निकली इस सवारी माए प्रशासन यातायात रा खास प्रबंध करिया है। ई कड़ी माए काले बूढ़ी तीजरी सवारी निकाली जायला। सावण रा पवित्र मीनारी तीज ने हरियाली तीज रा रूप माए मनाई जावे है। ई दिन अखंड सौभाग्य और सुखी ग्रस्त जीवन री कामना करी जावे। तीज माते मेहंदी लगावण झूला झूलण और लोकगीतों रो खास महत्व है। प्रदेश माए तेज बिरखा रो दौर कमजोर पड़ गयो है। फेरों कुछ हल्का माए बिरखा दर्ज करी जी है। सवाई माधोपुर माए बिरखा भी जबकि राजधानी जयपुर माए बादल छाई जा रिया। ये बीच मौसम महकमो आज प्रदेश रा 18 जिला माए बिरखा रो येलो अलर्ट काढ़ियो है। महकमा मुजब राज्य माए 18 अगस्त ताई अगुणी राजस्थान रा कुछ हल्का माए हल्काऊ मजला दर्जारी बिरखा वह सके है। जयपुर और भरतपुर संभाग रा कुछ जगह येलो अलर्ट रह लो। वठे जोधपुर कोटा उदयपुर अजमेर और बीकानेर संभागरा घनकरा हल्का माए मौसम साफ रेवण री आस है। न अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फिरों सुन ले रहो। राष्ट्र आज 80वो स्वतंत्रता दिवस मना रियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किलारी प्राचीरों देश ने संबोधित करिया। प्रदेश भर माए स्वाधीनता दिवस रो उमाव चरम माथे रियो। बीकानेर माए विया राज्य थर्रा जलसा माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो विकसित राजस्थान 2047 सारू सरकार बरोबर कोशिश माए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काले प्रदेश रा दौरा माते रेवेला। राज्य ने 12,112 करोड़ रुपया रा विकास कामारी सौगात देवेला। और हरियाली तीज आज राजधानी जयपुर माए निकाली जा रही है तीजरी शाही सवारी। इंडर साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरा भीया मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं जयपुर अजमेर का आमेर चैनल। इस समय शाम के 7 बजने को है। किसान भाई बहनों के लिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: मैली धोती खुली है काया, करे जो मेहनत कदी लालच में ना आया, बे टूटी छपरी में भी होवे कोनी परेशान, अन्नदाता कहलावे है ए अपना किसान। किसान वाणी सुनबाड़ा सगड़ा काश्तकार भाई बहना ने श्रोतावा ने चंचल रो ने भरियो मीठो मीठो राम राम, और सगड़ा बड़ा बूढ़ा दादा दादी नाना नानी चाचा चाची ताऊ ताई मामा मौसी बहन भाईली भुआ सब ने ढोगरज है सा। अदिति आपने भी घने मानू ढोग है सा। राम राम सा।
7: राम राम सा चंचल बहन और सुनबाड़ा सगला श्रोतावा ने अदिति भट्टरो ने भरियो नमस्कार और राम राम सा।
6: आज तो आपा दो लूठा जो है त्योहार मना रहा हाँ
7: जी सर।
6: भाई राजस्थान की धरती में तो तीज को मैं

0: वही है। और भारत भूमि के ताई जो आपा 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा हाँ,
1: जी सर,
0: मन मन में एक बात आ रही है
1: आप कह दो सर।
0: कि तीन रंग में देश समाया, देश मेरा अतरंगा है। तीन रंग में देश समाया, देश मेरा अतरंगा है। कोटि कोटि मैं करूं नमन उसे, जिसका नाम तिरंगा है, जिसका नाम तिरंगा है।
1: जी सा, ये तीन रंगा का मायने आपने पूरी दुनिया समायोड़ी छे। ई के आगे पिछोकड़े आपा देखा जद आपा समृद्ध जो आपनो भारत छे वह आपा ने दिखे छे। और इन्हें और आगे बढ़ावा के लिए थोड़ो सो आपनो योगदान तो चाहे जी।
0: बिल्कुल अदिति, स्वतंत्रता दिवस आप हर साल मनावा हाँ, 15 अगस्त आवे जद भी, और 26 जनवरी आवे जद भी, वे तीन रंग को पुलाव भी आपा बनावा ला, तीन रंग की मिठाइयाँ भी आ जावे ली, तिरंगा की शी आपा जो है तिरंगो भी फहरा दिया ला, वैसा कपड़ा भी पहन
1: जी
0: लिया
1: सर,
0: ला, खूब देशभक्ति गीत भी चला लिया ला, और फिर जब 16 अगस्त आवे है या 27 जनवरी आवे है फिर सब कुछ शांत हो जावे है। तो ये विचारणीय बात है कि आपा जद हर्षोल्लास से त्योहार मनावो चावा, और मन लागे है ओ सेऊ बड़ो त्योहार है
1: जी सर,
0: भारत भूमि के लिए, और कोई भी देश को जो स्वतंत्रता दिवस है या स्वाधीनता दिवस है वो बहुत बड़ो त्योहार होवे है। तो अशी स्थिति में संकल्प लेवा अब का स्वतंत्रता दिवस कि आपा अपना देश हित की बात कराला, जाति पाति ऊंच नीच धर्म कोई भी चीज हो, बात सबसे ऊपर ने आपने देश रखनो है कि आप जो धर्म है जो पंथ है बे मानबा की चीज आप मानो, सबको निजी विषय है
1: जी
0: लेकिन
1: सर,
0: देश सबको सामूहिक विषय है, और सामूहिक ही इको हमेशा जो है विकास होना चाहिए, फिर कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए।
1: जी सर। और सर सागे ही एक त्योहार भी है जी, आप शुरुआत में बात करें
0: जी
1: तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो तीज आई छे नरा सर आपने सागे त्योहार
0: त्योहार
1: आना
0: ले
1: ले रही छे।
0: बिल्कुल, और चूंकि त्योहार आरी बात हो रही है और आपा स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जद राजस्थान की बात हो है, वीरा की बात हो है, धरती का लाल की बात हो है, तो महाराणा प्रताप की बात हो है, बांका वीर चेतक री बात हो
1: जी
0: है,
1: सर,
0: और माटी की महक की बात हो है। तो अब अइया तो बातचीत आपा चाहे सारे समय ही करता रहवा, पूरी टाइम बात कर सका, लेकिन अगर यही बात संगीत में कहवा तो भी कोई एक अनोखो असर हो है।
1: जी सर, यानी कि अपना कार्यक्रम में चार चांद लग जावेला।
0: तो ए चार चांद लगा दियो सा।
1: चलो सर।

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
1: पुतला बोल रहे
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
1: मतलब
0: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी हाँ? माटी भी तंदुरुस्त और लोग अरे अब पहली वाली बात कहाँ
1: पर हम तो सब यही डाले हैं
0: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं
1: सच
0: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं
1: ठीक है भाई मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती
3: तो देखो जो माटी है संवेद स्वर में यो गीत आपा सुनिया हिंदुस्तान री राजस्थान री माटी रो महत्व बताया और देखो किसान वाणी कार्यक्रम में किसाना की बात होनी बहुत जरूरी
4: जी
3: है
4: सा
3: और तो, प्रभु भाई आ गया है और पावना सु जानकारी आने कह दिया कि वे दिलवा दे आपा सुना
4: चलो
5: किसान भाई और बहना कार्यक्रम में जानकारी देवा के वास्ते पधार चुका है रामलाल जी मीणा आप रिटायर्ड अतिरिक्त निदेशक है कृषि और बस्सी जयपुर से अपना कार्यक्रम के मायने पधारिया है और आज अपन जानकारी देवला संरक्षित खेती सुरक्षित खेती ई विषय पर रामलाल जी मीणा साहब आपको कार्यक्रम के मायने गुणों गुणों स्वागत है सा राम राम सा
6: राम राम सा
5: और सांसों पहले आपसे वही जानना चाहूंगा कि संरक्षित खेती के वकीन है और इकी वर्तमान टाइम की अगर आप बात करें तो ये कहीं हो सकता है सर
6: किसान भाइयों संरक्षित खेती इस प्रकार की खेती है कि जिसमें परंपरागत खेती से अटके खेती की जाती है जनसंख्या बढ़ रही है
5: जी
6: प्राकृतिक साधन खनन और दूसरे कार्यों में जमीन काम आ रही है जमीन कम पड़ती जा रही है इसके साथ पानी की भी कमी पड़ रही है और जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी बढ़ रही है कब बरसात हो जाए कब ओलावृष्टि हो जाए कब आंधी और तूफान आ जाए ऐसी स्थिति में किसान के लिए सुरक्षित और संरक्षित खेती की आवश्यकता होती है इस संरक्षित खेती में इस प्रकार की खेती की जा सकती है कि किसान भाई प्राकृतिक खेती से अटके एक ढांचागत निर्माण करता है और उस ढांचागत निर्माण के अंदर जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है जिनकी बहुत ज्यादा लागत लगती है बहुत ज्यादा वो होती है बाजार में मांग होती है उस खेती को पहले प्राथमिकता से इस खेती में करते हैं विशेष रूप से सब्जियां और जो फ्लावर्स है इसमें करते हैं इसके अलावा वो ऐसी फसलें जिनके बाजार में अच्छे मूल्य मिलते हैं और उसकी आवश्यकता मांग भी ज्यादा होती है तो ऐसी फसलों को भी लाते हैं जिसमें

0: विदेशी सब्जियां हैं, आपका शिमला मिर्च ले सकते हैं, जुकनी ले सकते हैं, इसके अलावा कलर कैप्सिकम को भी काम में लेते हैं। इस प्रकार की जो सब्जियां करते हैं उस सुरक्षित खेती के रूप में काम में लेते हैं।
1: और आपां एक संरक्षित खेती की संरचना की अगर बात करें तो कौन कौन सी संरचनावां है जी ये खेती के मायने काम में ली जावे साहब?
0: किसान भाइयों, जब बात करते हैं सुरक्षित खेती की, तो जो संरचनाएं हैं वो आदमी के द्वारा बनाई जाती है, वो अब किसान अपनी लोकल आवश्यकता के अनुसार अपने खुद के संसाधनों के आधार पर उसका चयन कर जाता है।
1: जी
0: तो किसान ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल, मल्चिंग करते हैं। इसके अलावा भी किसान भाई अपने स्वयं के साधनों से स्वदेशी संरचना का भी काम ले सकता है। ग्रीन हाउस में भी दो तरह के ग्रीन हाउस है, एक तो ऐसे ग्रीन हाउस जो कि बिल्कुल ऑटोमेटिक है, और एक है फैन फेड ग्रीन हाउस
1: जी
0: जिनमें जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है जैसे फ्लोरिकल्चर, वो थोड़े से ज़्यादा महंगे ग्रीन हाउस में काम लेते हैं, और जो सादा है सब मिर्ची है, टमाटर है, उनमें कम लागत वाले ग्रीन हाउस काम में लेते हैं। इसके अलावा शेड नेट हाउस है,
1: जी
0: शेड नेट हाउस के अंदर एक छायादार शेड बनाया जाता है जिसमें लोहे के ढांचे के ऊपर और नेट हाउस अलग अलग कलर के नेट होते हैं, और जैसी आवश्यकता है किसान को उस तरह के नेट से ढक के उसको खेती की जा सकती है। विशेष रूप से जैसे बरसात के समय उसमें नेट हाउस में बरसात का पानी रुकता नहीं है, लेकिन सर्दी और गर्मी इसके लिए नेट हाउस की उपयोगिता होती है। इसके अलावा दूसरी संरचनाएं हैं जो सर्दी विशेष तौर से सर्दियों में लो टनल है, और लो टनल के अलावा वॉकिंग टनल है,
1: जी
0: ये संरचनाओं को भी अपने काम में ले सकते हैं।
1: जी और संरक्षित खेती के मायने अगर आप बात करें तो कौन कौन सी खेती है जो कि संरक्षित खेती के अंतर्गत करी जा सके है?
0: सुरक्षित खेती के अंदर मैंने पहले भी अवगत कराया, और सुरक्षित खेती के अंदर वो फसलें काम में ली जाती है जिनकी बाजार में बहुत अच्छी डिमांड हो,
1: जी
0: बाजार में अच्छे पैसे मिले किसान को, जलवायु से बिल्कुल सेंसिटिव हो, जलवायु के प्रति जो ऐसी फसलें जो जलवायु से प्रभावित होने हो, तो ऐसी फसलों में तो जिसमें कलर कैप्सिकम भी काम में ले सकते हैं, जुकनी है, विदेशी सब्जियां जैसे ब्रोकली है, लेट्यूस है, पार्सले है, सेलरी है, पोकचुई है, इस प्रकार की सब्जियां जो कि खुले वातावरण में नहीं होती है, उनको हम ग्रीन हाउस और शेड नेट हाउस में लगा के अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। आजकल तो नेट हाउस और ग्रीन हाउस के अंदर जो जुकनी और आपका टमाटर, ऑफ सीजन के अंदर धनिया, इस तरह की फसलें लेके भी अपने उससे अच्छा पैसा कमाते हैं।
1: और कोई किसान भाई अगर एक खेती के अंतर्गत या फूलों की खेती अगर करना चाहे तो वह भी संभव होगा सर?
0: बिल्कुल, फूलों की खेती के अंदर गुलाब, डच रोज होता है, अच्छा वो लगा रहे हैं और अच्छा फायदा भी ले रहे हैं। जो शादियों का समय है उसमें फूलों की खेती से अच्छा कमाते हैं, कि खुले में बर्फ की जमा हो जाती है, सर्दी लगती है, इसके अंदर जो फूलों की गुणवत्ता है, क्वालिटी, वो भी अच्छी होती है,
1: जी
0: क्योंकि इसके अंदर सीधा फ्रॉस्ट से प्रभावित नहीं होते, सर्दी से प्रभावित नहीं होते हैं, तो उससे फूलों की क्वालिटी अच्छी होती है, और उनको आप किसी ग्रीन हाउस में रख कर और डायरेक्ट कोल्ड चेन से जोड़कर उसको बाहर भी भेजा जा सकता है। तो इस तरह के ग्रीन हाउस और सुरक्षित खेती के अंदर फूलों की खेती भी अच्छी तरह से ली जाती है।
1: जी और अब आप बात करें कि कोई किसान भाई जो संरक्षित खेती या सुरक्षित खेती की तरफ वो बढ़े या वो खेती कर रहे हैं तो भाई ये खेती का जो घटका की बात करें तो कौन कौन सा मुख्य मुख्य जगह घटक है किसान भाई ने अपनाना चाहिए जी?
0: किसान भाइयों, हम हमेशा सुरक्षित खेती शब्द आता है तो ये सोचते हैं कि केवल जो एक ग्रीन हाउस और शेड नेट है यही संरचना है, इसी में खेती करते, लेकिन विशेष रूप से कोई भी सुरक्षित खेती हो या दूसरी खेती हो, उसमें जो विशेष घटक है जिनमें सफलता की संभावनाएं ज्यादा रहती है, उनका विशेष योगदान है।
1: जी
0: विशेष रूप से तो एक रिज बेड, रिज बेड का मतलब उठी हुई क्यारी, और वो राजस्थान और पूरे देश के लिए सभी खेती, चाहे ओपन में हो, चाहे ग्रीन हाउस में हो, शेड नेट में हो, उसमें रिज बेड पे होती है। तो उससे क्या है कि एक तो बीज कम लगता है, पानी की मात्रा कम लगती है, और उसके अंदर क्वालिटी भी ज्यादा होती है, उत्पादन भी ज्यादा होता है। दूसरा होता है कि रिज बेड के अलावा अगला कंपोनेंट है जो है कि ड्रिप इरिगेशन।
1: जी
0: ड्रिप इरिगेशन तो रिज बड़ी हुई होती है तो ड्रिप इरिगेशन उस पर लगाकर उसे फर्टिगेशन दे सकते हैं, जब पौधे को आवश्यकता है उसी टाइम पानी दिया जाता है, पानी की बचत होती है, खरपतवार भी कम होती है, तो ड्रिप इरिगेशन भी एक सुरक्षित खेती का मुख्य घटक है।
1: जी
0: इसके आगे यदि ये दोनों चीज अपनाते हैं, रिज बेड और ड्रिप इरिगेशन, तीसरा घटक इम्पोर्टेंट है वो है मल्चिंग।
1: जी
0: आज पहले प्राकृतिक मल्चिंग काम में लेते थे जिसकी वजह से बरसात के अंदर जो बेड्स बनाते थे या पेड़ पौधों वो होते थे उससे मिट्टी कट जाती थी। इसके अलावा अब वर्तमान में ये मल्चिंग आ गई प्लास्टिक शीट, ऐसी प्लास्टिक जो कंज्यूम हो जाती है और 6 महीने के अंदर नष्ट हो जाती है।
1: जी

0: उस तरह की प्लास्टिक यूज लेते हैं, और उस प्लास्टिक सीट में भी अलग अलग कलर की प्लास्टिक मल्चिंग होती है। एक तो गर्मी में प्लास्टिक मल्चिंग काम में लेने वाली होती है, एक सर्दी में होती है, उसके कलर अलग होते हैं। जो वाइट और सिल्वर कलर है जो प्लास्टिक मल्चिंग का, वो ऊपर की साइड रखा जाता है। जो ब्लैक कलर है वो प्लास्टिक मल्चिंग का नीचे रखा जाता है, बेड के ऊपर लगाई जाती है। तो बेड बना देते हैं, बेड के बाद में ड्रिप इरिगेशन की लेटर लगाते हैं, और लेटर लगाने के बाद में उसके ऊपर मल्चिंग, प्लास्टिक मल्चिंग लगाते हैं। और मल्चिंग में भी एक छेद होते हैं, जैसी अपनी फसल की दूरी है उसके हिसाब से उस छेद निकालते हैं, और उस छेद निकालते हैं तो केवल छेद होता है उसी जगह खुला ओपन में रहता है, बाकी चारों तरफ से उसको मिट्टी से ढक देते हैं। उसकी वजह से जो पानी का वाष्पीकरण होता है वो कम होता है, और जो खरपतवार होती है उस खरपतवार का भी नियंत्रण होता है। और खरपतवार के साथ साथ में जैसे सर्दियों के अंदर जो जमीन का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है मल्चिंग की वजह से, अन्यथा इसमें फ्रोस्ट किए जाते हैं तो फ्रोस्ट कम होता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। दूसरा रूट जो डार्क जोन होता है, तो मल्चिंग के नीचे डार्क जोन होता है, उसकी रूट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और जो प्लास्टिक मल्चिंग लगाते हैं तो उसकी वजह से जो इंसेक्ट है और पेस्ट है वो भी कम लगते हैं। तो इस प्रकार से मल्चिंग का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा और भी दूसरे जो कंपोनेंट है जिनके अंदर मल्चिंग का उपयोग होता है और जो दूसरी चीज है उनका भी उपयोग होता है, एक लोटनल होती है। लोटनल विशेष रूप से राजस्थान में नवंबर से लेकर और आपका फरवरी तक काम में ली जाते हैं। लोटनल जो ओपन फील्ड है उसके अंदर जो आपका मिर्च है, टमाटर है, या जो फ्रोस्ट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव फसलें हैं उनको काम में ली जाता है। इसमें एक प्लास्टिक सीट होती है जो 25-30 माइक्रोन की होती है, और उसको बांस की या लोहे की छड़ियां लगाकर उसको कवर किया जाता है फसल को। इसमें विशेष तौर से जो कुकरबिट्स होते हैं जिसमें तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, ये फसलें अगली फसल लेने के लिए उसमें लगा देते हैं और उसको कवर कर देते हैं। उसके बाद में जब भी फरवरी का महीना आता है, मार्च का महीना है, तो वो लोटनल उठा दी जाती है। तो उससे क्या है, उसकी ग्रोथ होती है और जो अगेती फसल है उसका बाजार भी अच्छा मिलता है और उससे क्वालिटी भी अच्छी होती है। दूसरा उसमें फसल भी ज्यादा अच्छी, पैदावार भी अच्छी होती है। तो लोटनल का यूज होता है। एक कंपोनेंट है वॉकिंग टनल, जो इसका नाम से ही वह वाक वाक यानी घूमना। तो ऐसी टनल, ऐसी सुरंग जिसके अंदर आदमी घूम सकता है, तो उसमें 8 से 10 बेड बढ़ाई जा सकती है। इसकी लंबाई खेत की उपलब्धता के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई करीबन 10 से 12 मीटर चौड़ाई रहती है और 4 मीटर ऊंचाई तक होती है। इसको वॉकिंग टनल कहते हैं, जिसमें वॉक किया जा सकता है। इस तरह की खेती भी जो आपका फ्लावरी कल्चर है, या आपका बेलवाड़ा टमाटर है, या तरबूज है, खरबूज है, चुकनी है, ब्रोकली है, कलर कैप्सिकम है, इन फसलों के लिए एक कंपोनेंट है संरक्षित खेती में जिसका किसान आमतौर से यूज करता है, नेट हाउस। नेट हाउस ज़्यादातर गर्मियों के अंदर जो फसल होती है उसमें क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो देते हैं, छाया हो जाती है, और छाया के हिसाब से नेट होता है। इसके अलग अलग वो माइक्रोन का होता है, जिसमें किसी में 90%, किसी में 60%, किसी में 70%, जैसे भी किसान की आवश्यकता है उस तरह का नेट काम में लिया जाता है। उसमें खीरा जैसी फसल है, या आपका स्वीट कॉर्न है, या तुरई है, इस तरह की फसलें आप लगा सकते हैं। चेरी टमाटर है, ये भी काम में ले सकते हैं। तो इस तरह के नेट हाउस होते हैं। और एक होता है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के अंदर साल भर के अंदर फसलें ली जाती है, विशेष तौर से गर्मी में। थोड़ी सी ग्रीन हाउस के अंदर गर्मी ज्यादा होती है तो उसमें क्या पंखा और फैन की आवश्यकता पड़ती है कूलिंग करने के लिए। बाकी के ग्रीन हाउस में सर्दी और बरसात में, बरसात का पानी सीधा ग्रीन हाउस के अंदर नहीं जाता है, और सर्दी के अंदर भी वातावरण टेम्परेचर का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। तो विशेष तौर से सर्दी और बरसात के लिए ग्रीन हाउस बहुत ही ऐसा संरचना है जिसके अंदर किसान भाई ज्यादा से ज्यादा फसल ले सकते हैं। गर्मियों के अंदर जो नेट हाउस है उसमें ज्यादा से ज्यादा फसलें ली जा सकती है।
1: बिल्कुल सर, आप जहाँ ग्रीन हाउस की बात बता रहे हो कि भाई किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सके, तो ग्रीन हाउस का मायने खेती करना, या ग्रीन हाउस की जो संरक्षित खेती है वह सुरक्षित खेती की प्रकार से हो सके, इस पर थोड़ा सो किसान भाई,
0: किसान भाइयों आज की एक आम बोलचाल की भाषा में किसान, कई लोग कहते हैं कि जो ग्रीन हाउस के अंदर खीरा होता है उसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड या कीटनाशक का उपयोग होता है। लेकिन मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप शुरू से ही अपनी फसल को इनसे बचा के रखोगे, तो क्योंकि जब वातावरण बिल्कुल सुरक्षित वातावरण फसल के लिए है तो कीड़ों के लिए भी सुरक्षित वातावरण है। लेकिन आप यदि कीड़ों से शुरू से में बचाव करोगे तो उसमें फिर संभावना कम होगी कि इसमें कीड़े लगे, क्योंकि उसमें फसल को चारों तरफ से बाहर का कीड़ा आक्रमण नहीं कर सकता। तो विशेष तौर से शुरुआत में ही जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना जरूरी है उसके

0: अंदर कीड़ा पनप नहीं पाए। तो विशेष तौर से किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि जो भी किसान भाई ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस या लोटरनल मल्चिंग में करें, तो वो शुरुआत से ही प्रोफाइलेमेटिक स्प्रे, जिसको कहते हैं कि सुरक्षित उपाय करें कि वो उसमें कीड़ा या बीमारी नहीं पनपने दे, तो फिर उसमें कम से कम पेस्टिसाइड और दवाओं की जरूरत पड़ेगी। एक बार इसमें यदि कीड़ा और बीमारी पनप जाता है तो फिर उसको नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षित इसलिए है कि यदि आपने इसमें कीड़ा और नहीं पनप नहीं दिया जाए तो वो सुरक्षित होगा और उसमें कम से कम पेस्टिसाइड का यूज होगा। इसलिए इसको सुरक्षित खेती और सुरक्षित खेती बोला जाता है। लेकिन इसमें विशेष तौर से किसान को 24 घंटे और उसमें समय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें किसी तरह की शीतलता की गुंजाइश नहीं रहती है।
1: रामलाल जी मीणा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक बस्सी जयपुर से आप कार्यक्रम का मैंने पधारिया और आज माका किसान भाई और बना ने संरक्षित खेती सुरक्षित खेती ये महत्व विषय पर बहुत ही चौकी जानकारी दी। एक वास्ता आपको मोकड़ो धन्यवाद सर।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
4: बहुत ही लाभकारी जानकारी, संरक्षित खेती सुरक्षित खेती, और अदिति आज का जमाना की जरूरत भी है।
5: जी सर, और मांग है, जरूरत है, तो ये तो आपने अपनानी ही चाहिए।
4: बिल्कुल,
5: और प्रभु भाई इतनी बढ़िया जानकारी आप दिलाया, तो आपको भी घनो घनो धन्यवाद सर।
4: और कोरो धन्यवाद आपा देवा को नहीं। तीज त्योहारा की भी बात हो रही है, तो जद आपा राष्ट्रीय त्योहार को गीत सुनया हां, तो आज जो लुगाया को बढ़िया लूटो सो त्योहार है तीज, एक लहरियो भी सुना सा।
5: चालो सा आपकी फरमाइश तुरंत पूरी करूं।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर। शाम के 7:30 हुए हैं। कार्यक्रम सुने चौपाल

कार्यक्रम सुनिया सगला परिवार ने वेद भाई की घनी घनी राम राम, मोकली मोकली राम राम। किसान भाइयों, आज को दिन जो है वो अपने हरेक भारतीय खातर गर्व, उत्साह और देशभक्तियों बरेड़ो है। आज के दिन यानी 15 अगस्त को है वो अपनों राष्ट्रीय जीवन को एक ऐतिहासिक दिन है। और जब 1947 में अपनों देश लगभग 2 शताब्दियां गए औपनिवेशिक शासनों ई दिन आप स्वतंत्रता प्राप्त करी। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरा में दर्ज है। आ केवल सत्ता परिवर्तन को ही दिन वो कोनी हो, बल्कि भारतीय जनता खातर आप गए भविष्य को निर्माण खुद शुरू करने की आ एक शुरुआत ही। भाइयों, स्वतंत्रता आंदोलन में देश गए न्यारे न्यारे क्षेत्र में, न्यारे न्यारे वर्गा में और समुदाय गए लोगां मिलजुल के किए गए योगदान दियो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष ने जन जन तक के पुगायो। बठई नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई और बहुत सारा जाना अनजाना स्वतंत्रता सेनानियां आपको साहस और बलिदान किए गए देशवासियों ने आज़ादी की भावना ने मजबूत करो। और सगई किसान भाई, मजदूर, विद्यार्थी, महिला और आम जका नागरिका बां भी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बहुत सारा जका लोग हा वे जेल यात्राएं बां करी, बां बहुत सारा कष्ट सिया और आपको जीवन जो है वो राष्ट्र खातर किए किसान भाइयों समर्पित कर दियो। किसान भाइयों, स्वतंत्रता

दिवस पर जब तिरंगो आकाश में लहरावे तो हरेक भारतीय को सिर्फ जो है वो गर्व ऊंचो हो जाए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज ने 22 जुलाई 1947 ने संविधान सभा अपना लियो। तिरंगे में केसरियो सफ़ेद और हरे रंग के सागे बीच में 24 तीलियां वालो अशोक चक्र है। केसरियो रंग जो को है वो साहस और त्याग की भावना को संदेश देवे। सफ़ेद रंग जो को है वो शांति और सत्य को प्रतीक माने जावे। हरे रंग समृद्धि विकास और प्रकृति जुड़ा हुआ अपने संदेश देवे। और इंग सगे भाइयों अशोक चक्र जो को है वो निरंतर प्रगतिशील और गतिशीलता की अपने प्रेरणा देवे। और इन खातर तिरंगो अपने स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान बिंगो सम्मान और करोड़ों भारतीय की भावनाओं को जो को है वो प्रतीक है। तो भाइयों आज़ादी प्राप्त करनो अपनो पहलो बड़ो लक्ष्य हो पर बिंग बाद देश के सामने राष्ट्र निर्माण की बहुत मोटी जिम्मेदारी आई। और स्वतंत्रता के बाद की है कि भारत में लोकतंत्र शिक्षा विज्ञान खेती उद्योग स्वास्थ्य तकनीक और सगे आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में लगातार विकास करियो। 26 जनवरी 1950 ने अपने देश को संविधान लागू हुयो और देश ने लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में आपकी संवैधानिक यात्रा जगी है वाह भाइयों शुरू करी। और आज आपा देखा कि आपनों देश पूरी दुनिया में सारों मोटो लोकतांत्रिक देशों में एक है। और जिकी अपनी विविधता है भाषा संस्कृति परंपरा खान पान की एक न्यारी पहचान है और आई अपनी ताकत है। और किसान भाइयों आज़ादी को अर्थ केवल आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीणो ही कोनी इंग सगे की एक जिम्मेदारियां ही बहुत सारी जरूरी है। अपने अपने अधिकारों के सगे अपने कर्तव्य भी समझना चाहिए। अपने संविधान को सम्मान करना चाहिए कानून को पालन करना चाहिए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए सगी के अपने पर्यावरण ने सुरक्षित रखना चाहिए सगी अपनी जिकी बेटियां और महिला है बांगो अपने विशेष सम्मान करना चाहिए सगी जाति भाषा क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव अपने नहीं करना चाहिए। और अपने ईशो भारत बनाने में योगदान देना चाहिए जटे हर नागरिक ने सम्मान और अवसर मिले। तो किसान भाइयों बात चिता पावर कर पर अब थाना सुनावा रिशपाल ढाडी की गाइडी आलोक रचना।

किसान भाइयों, आपने देश की सारों मोटी ताकत बिंगा युवा है। और आज का युवा जो है वह केवल रोजगार पाने वाला व्यक्ति को नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भागीदार है। किसान भाइयों, युवा जो है वह शिक्षा और कौशल पाने प्राप्त करना चाहिए, नई तकनीक पाने सीखनी चाहिए, सागी किए के नवाचार ने अपनाना चाहिए और सागी समाज की जी की समस्या है बांगे समाधान में युवा ने किए के योगदान देना चाहिए और इंगे सागे सागे नशों और हिंसाओं में दूर रहे, सागे खेल शिक्षा विज्ञान और रचनात्मक गतिविधियां में भी आगे बढ़े। देशभक्ति केवल सोशल मीडिया पर संदेश लगाने या एक दिन तिरंगो फिरान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। देशभक्ति को वास्तविक रूप जो को है वो है ईमानदारी में आपको काम करना, समाज और राष्ट्र के प्रति आपकी जिम्मेदारी जगह बा निभाना। सागे किसान भाइयों, बात करा किसान भाइयांगी तो भारत जो को है बिंगी प्रगति में किए गए किसान भाइयांगी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। खेता में मेहनत करने वालों किसान देश को अन्नदाता है। स्वतंत्रता के बाद खेती क्षेत्र में बहुत सारा बदलाव आया। सिंचाई, उन्नत बीज, खेती का यंत्र, वैज्ञानिक खेती, फसल विविधीकरण और आधुनिक कृषि जिकी है बा नई तकनीकों नई दिशा अब बिना मिल चुकी है और आज आवश्यकता है कि

किसान जल संरक्षण, माटी स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां ने अपनावे, सागे स्वस्थ कृषियों की एक स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र को निर्माण हुए। बात करना किसान भाइयों महिलाओं की भागीदारी की, तो स्वतंत्रता संग्राम में किया गया महिला जो की है वहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दियो, जिया रानी लक्ष्मीबाई ले गए, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली और आम वर्गी बहुत सारी दूसरी महिला जो की है वहाँ संघर्ष में आपकी भूमिका निभाई। आज भारतीय महिला जो की है वह शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, सेना, खेल, खेती, उद्योग और व्यवसाय सहित हर एक क्षेत्र में किया गया अब आगे बढ़ने लग रही है और सगई एक मजबूत भारत के निर्माण खातर महिलाओं ने समान अवसर, सुरक्षा, सम्मान और शिक्षा देनों अपनी सारंगी सामूहिक जिम्मेदारी है। और किसान भाइयों आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने केवल अतीत ने याद कौन करना बल्कि भविष्य का भी अपने किए के बहुत सारा संकल्प लेना है। अपने संकल्प लेना है कि अपा अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करांगा, सगे अपा संविधान और कानून को पूरा सम्मान करांगा और अपा जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर भेदभाव नहीं करांगा, सगे अपा पर्यावरण की रक्षा कर सा और इंगे सागे सागे अपा पानी और प्राकृतिक संसाधनों को भी संरक्षण करांगा, अपा शिक्षा और वैज्ञानिक सोच ने बढ़ाओ दे सा, सगे अपा महिला बच्चा बुजुर्गों को सम्मान करांगा और अपा अपने कार्य ने ईमानदारी और निष्ठाओं कर सा और सारों बढ़ गया अपा भारत ने मजबूत, समृद्ध, स्वच्छ, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने में आपकी भूमिका जगी है वह किसान भाइयों निभावांगा। तो किसान भाइयों बातचीत आपा और कर सा पर अब टाइम है थाना एक गीत सुनाने को, तो थाना सुनावा महेंद्र कपूर और साथियों को गाइडो ओ गीत।

किसान भाइयों, जो को अपनो देश है वो एक जमीन को टुकड़े को नहीं, देश अपनी पहचान है, अपनी संस्कृति है और अपनी भाषा है। सगी के अपनी माटी है और सारों बड़गे अपा सारा भारतीयों की सांझे जिम्मेदारी भी है। किसान भाइयों, 15 अगस्त को दिन आपने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलावे और वो 15 अगस्त 1947 ने मिली आज़ादी की स्मृति को राष्ट्रीय पर्व भी है। पर वो सवाल है कि आज़ादी को वो पर्व बनाने के बाद हम अपनों जो है वो देश के प्रति के कर्तव्य है। देश हित में केवल सीमा पर जागे देश की रक्षा करना ही को नहीं, सगई किए के देश हित में रोजमर्रा का जगह छोटा मोटा काम है वे भी किए के दिखाई देवे। जे आप ईमानदारियों किए के अपनों आप काम करा तो वो भी देश हित है। जे आप सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करा तो वो भी देश हित में ही आसी। और सगी किए का जे आप सड़क पर सफाई व्यवस्था रखा तो वो भी देश हित में रह सी। सगी आप किए के पानी और बिजली की बचत करा और सगी आप पेड़ लगावर पाँगी देखभाल करा और सगी किए के किसी जरूरतमंद की सहायता करा, पर्यावरण की रक्षा करा तो वो भी किए का अपने देश हित में ही आवेगो। और किसान भाइयों, देश के विकास जो है वो केवल सरकार की जिम्मेदारी को नहीं है, राष्ट्र निर्माण में हरेक नागरिक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी नागरिका ने राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी खातर प्रेरित करो जावे। बात करें किसान भाइयों, देश हित की पहली बात की तो सारों पहली बात है ईमानदारी। और किसी राष्ट्र की मजबूती बिंगी ईमानदार नागरिक शक्ति पर निर्भर करे। जे आप अपने काम में ईमानदारी रखांगा और कोई गलत काम को समर्थन आप नहीं करांगा और सार्वजनिक संसाधनों का अपना दुरुपयोग नहीं करांगा तो आ अपनी ईमानदारी जी है बात देश हित में हो सी। और सागी किसान भाइयों, देश हित की दूसरी बात है शिक्षा। जे किसी देश की सारों बड़ी ताकत बिना शिक्षित और संस्कारित नागरिक हुए, बच्चा ने केवल डिग्री दिलाना पर्याप्त को नहीं, बने अच्छा संस्कार, जिम्मेदारी, अनुशासन और संविधान के प्रति सम्मान की शिक्षा भी देना अपने बहुत ही जरूरी है। अपनों प्रयास होना चाहिए कि कोई भी बच्चों शिक्षा में वंचित नहीं रहना चाहिए। बेटियों की शिक्षा ने विशेष महत्व अपन देना चाहिए। और सागी किए के पढ़े लिखे जो को युवा है वो आपके परिवार के साथ साथ समाज और देश के विकास में भी किए।

बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देश के। और किसान भाइयों, देश हित की तीसरी बात है बा है राष्ट्रीय एकता। और आपने देश में आप देखा कि भाषा धर्म संस्कृतियाँ और परंपरा आलो आपनों देश है। और आपने जी की विविधता है आई आपनी ताकत है। अपने जाति भाषा क्षेत्र और धर्म के नाम पर आपसी तनाव जो को है वो नहीं बढ़ानो चाहिए और एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। और आपने किए के सारों मोटी पहचान भी है। और देश हित की चौथी बात है स्वच्छ भारत। आप अक्सर देश ने स्वच्छ बनाने की बात करा पर इनकी शुरुआत आप अपने घरों और आपके आसपास में अपने कर लेनी चाहिए। कूड़ों जो को है वो निर्धारित स्थान पर अपन डालना चाहिए। प्लास्टिक को अनावश्यक उपयोग अपन कम करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी जी है वह अपने नहीं फैलानी चाहिए। एक नागरिक जद सड़क पर कूड़ों नहीं फेंकेगा तो केवल सफाई कर्मी को काम आसान हो जाएगा बल्कि देश की सुंदरता और स्वास्थ्य की रक्षा भी किए गए इन कामों हो जाएगी। और देश हित की पांचवी बात है पानी और पर्यावरण को संरक्षण। किसान भाइयों, पानी जो को है वो जीवन है। आने वाली पीढ़ियां खातर के पानी बचाने अपना दायित्व है। अपन के वर्षा जल को संग्रहण भी करना चाहिए और खेतों में पानी ने विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। और जड़ता ही संभव हो सके टपक और फवारा सिंचाई वर्गी जल बचत तकनीक अपना लेनी चाहिए। और इन प्रकार पेड़ लगाना ही पर्याप्त को नहीं बाकी देखभाल करना भी अपना जरूरी है। एक पेड़ केवल अपना छाया ही कौन दिया बल्कि पर्यावरण ने संतुलित रखने में भी किए योगदान देवे और सागे किए। किसान भाइयों, अपने किसान भाइयों को सम्मान करना चाहिए और युवा शक्ति और महिला सम्मान भी अपने किए के बढ़ाना चाहिए। सागे किए के कानून और संविधान को भी सम्मान करना चाहिए और जिसका अपना वीर सैनिक है और शहीद है बंगो भी सम्मान अपने करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब इन जानकारी के सागे ही इन बातचीत के सागे ही अब थाना सुना दें एक और गीत और बिंग बात थाना सुना से बाजार भाव। तो अभी थाने सुनावा सुल्तान राम और पार्टी गुगाइडो ओ गीत।

0: ग्रामीण परिवार सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर। रात के 8 बजे हैं। अब सुने, 80वें जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह की रेडियो रिपोर्ट, प्रस्तुति नवीन सिसोदिया की, तकनीकी सहयोग सोहनलाल, अन्य सहयोग मोहनलाल का। इस रिपोर्ट का आलेख और वाचन रोहिता शर्मा ने किया है। तो आइए सुने ये रेडियो रिपोर्ट।
1: आज 15 अगस्त 2026 को स्वाधीनता दिवस का 80वां जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम श्री गंगानगर जिले के भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय में पारंपरिक श्रद्धा उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रातकालीन बेला में राष्ट्रगीत के बाद मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात मुख्य अतिथि ने परेड का खुले वाहन में निरीक्षण किया।

निरीक्षण पश्चात परेड की विभिन्न टुकड़ियों यथा राजस्थान सशस्त्र बल, राजस्थान पुलिस महिला और पुरुष, बॉर्डर होमगार्ड, अर्बन होमगार्ड के साथ अदक्ष परेड टुकड़ियों, एनसीसी बालक बालिका, भारत और हिंदुस्तान गाइड और स्काउट तथा नागरिक सुरक्षा विभाग की टुकड़ियां ध्वज मंच के सामने ध्वज को सलामी देते हुए आगे बढ़ी।

0: ये मार्च पास्ट आमंत्रित गणमान्य नागरिकों में देश भाव को जागृत करने वाला था, वहीं ये हमें अनुशासन का संदेश देने वाला पल रहा। महामहिम राज्यपाल का लिखित संदेश एडीएम प्रशासन श्री गंगानगर सुभाष कुमार ने आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों को पढ़कर सुनाया।
1: मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, आपको अस्थि में स्वाधीनता दिवस की अशीव शुभकामनाएं। आज पूरा देश सम्मान और गौरव के साथ यह राष्ट्रीय पर्व मना रहा है। मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले स्वतंत्र

0: सेनानियों और अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। सरहद पर सीना तान कर खड़े वीर सैनिकों का अभिवादन करता हूँ। अंग्रेजों के दमनकारी शासन को हम पीछे छोड़ चुके हैं। आज हमारा प्रदेश नव निर्माण के दौर से गुजर रहा है।
1: श्रीगंगानगर जिले के शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं को उनके विराजमान स्थान पर मुख्य अतिथि द्वारा सम्मान प्रतीक और शोल भेंट कर सम्मानित किया गया। उपस्थित जनसमूह की आंखों में देश पर बलिदान हुए शहीदों के लिए सम्मान और कृतज्ञता का भाव साफ दिख रहा था। प्रातः 10 बजे की उमस भरी धूप में जब स्कूली बच्चों ने पीटी प्रदर्शन किया तो दर्शकगण अपने स्थान से उठकर उनकी हौसला अफजाई करने लगी।

महीनों से चल रही उनकी साधना को सभी ने सराहा। फिर आई सांस्कृतिक कार्यक्रम की बारी। ये हिस्सा सभी ने पसंद किया और इन कलाकार बच्चों ने अपने कला प्रदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी।

0: उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं, राजकीय कर्मचारियों, शैक्षणिक श्रेष्ठ छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों को जिला प्रशासन द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
1: आज आपको यहाँ किस सिलसिले में सम्मानित किया गया?
2: हमारी जो संस्था है मारवाड़ी ओम मंच, ये इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। लगभग 800 के करीब हमारी संस्थाएं हैं और जो हमारी नारी सशक्तिकरण है, करीब 10 साल पहले हमारी संस्था को इसी तरीके से जिला स्तर पर सम्मानित किया गया था, उसका मौका आज हमारे को मिला है। मेन हमारा जो सबसे मेन फर्स्ट मोटिवेशन रहता है कन्या शिक्षा, जिसके लिए हम 2014 से काम कर रहे हैं। हमारी जो संस्था है हर साल एक बड़े स्केल पर प्रोग्राम करती है जिसको नाम आयाम है, जिससे जितना भी फंड रेज होता है वो कन्या शिक्षा पर लगता है। और आज भी हर स्कूल, लगभग कितने भी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज ऐसे हैं जो बच्चियां बहुत अच्छी हैं पढ़ाई में और वो अपना जो पैसा है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, उसका पैसा जो है वो हमारी संस्था हर तरीके से संस्था के साथ कोऑर्डिनेट करके उनका पैसा, चाहे कन्या विवाह है, चाहे कन्या शिक्षा है, सामाजिक स्तर पर हर स्थिति में, चाहे गौ सेवा है, जीव दया है, अमृत धारा है, अभी हमने एक सेवा प्रकल्प भी किया जिसके अंतर्गत हमने शहर के अलग अलग हिस्सों में इतनी भयंकर गर्मी में लेडीज होते हुए भी करीब करीब 3 से 4 घंटे जितने में

0: गर्मी में जितने भी गरीब हैं, आने जाने वाले हैं, सबको सेवाएं प्रदान की। उसके अलावा अमृत धारा के प्रकल्प में करीब करीब कितने, शुरू से लेकर आज तक हम हर साल कम से कम 3 से 4 वाटर कलर शहर में हमेशा लगाते हैं हर साल।
1: श्रोताओं, हमारे साथ हैं डॉक्टर सुखपाल सिंह बराड़, पीएमओ श्रीगंगानगर। आपको आज यहाँ स्वाधीनता दिवस के मुख्य समारोह जिला स्तरीय में सम्मानित किया गया, आइए आप इसे पूछें, आपको किस सिलसिले में यहाँ सम्मानित किया गया है?
2: डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहले सर्जरी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में कार्य किया, अभी मैं प्रमुख शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ, और मैंने इसमें परिवार कल्याण के कार्यक्रम में बहुत काम किया है, और इसके अलावा मैंने डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की शुरुआत की, उसमें पायनियर किया। अभी जो हॉस्पिटल में काफ़ी सारी सर्जरी लैप्रोस्कोपिक होती है, उसकी शुरुआत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करने में मेरा योगदान था इसमें। अभी प्रमुख शिक्षा अधिकारी रहते हुए बहुत सारे नवाचार किए हैं, जैसे हर रोज बेड शीट नहीं चेंज होना, और जैसे कैथ लैब का जो है अभी गवर्नमेंट से परमिशन लेना, उसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए, और इसके अलावा और भी छोटे छोटे काम जैसे न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया, ईएनटी डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने में मेरा पूरा योगदान है, और भी अच्छे कार्य कर रहा हूँ, इसलिए जिला प्रशासन ने मुझे इसके लिए योगदान दिया है।
1: एकमजीत, आपने ऐसा क्या किया जो यहाँ पे सम्मानित किया गया?
3: मेरा नाम है एकमजीत, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं गंगानगर में खेला था पहले, इसके बाद मैं स्कूली खेला, उसके बाद मैंने स्टेट खेला, अच्छा खेला, उसके बाद नेशनल खेला, उसके बाद जीते हम नेशनल। ये सब मेरा सफ़र रहा इसमें क्रिकेट में, ये बढ़िया सफ़र रहा मेरा, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर। हमारा पहला मैच था भरतपुर के साथ, मैंने 49 स्कोर किया, और मेरा दूसरा मैच था टोंक के साथ। हाँ, मेरी योजना यही है कि मैं इंडिया खेलूं।
4: कार्यक्रम में गणमान्य नागरिकों के साथ श्री गंगानगर एमएलए जयदीप बिहाणी, सादुल शहर एमएलए गुरबीर सिंह बराड़, माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक, जिला प्रमुख दूलाराम इंदलिया और एसपी श्रीगंगानगर हरिशंकर उपस्थित रहे। देशभक्ति के भावों से भरा ये कार्यक्रम राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। स्वाधीनता दिवस का 80वां उपखंड स्तरीय कार्यक्रम सूरतगढ़ के बस स्टैंड परिसर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि एसडीएम सूरतगढ़ भरत जयप्रकाश मीणा ने ध्वजारोहण किया। गणमान्य नागरिकों के साथ विधायक डूंगर राम गेदर, एडीएम सूरतगढ़ भवानी सिंह पंवार, तहसीलदार विनोद कड़वासरा, पूर्व विधायक राजेंद्र भादू और ईओ नगरपालिका सूरतगढ़ गणपत राम कस्बा उपस्थित थे। विभिन्न उत्कृष्ट कार्य करने वाले 85 व्यक्तित्व को प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आकर्षण जवाहर नवोदय विद्यालय की बैंड प्रस्तुति रही। इस अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच द्वारा एक रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया। देशभक्ति से भरा ये कार्यक्रम राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। आकाशवाणी सूरतगढ़ से इस रेडियो रिपोर्ट के प्रस्तुतकर्ता नवीन सिसोदिया, तकनीकी सहयोग रहा सोहनलाल निम्मीवाल का, विशेष रूप से सहयोग दिया मोहनलाल ने, आलेख और वाचन रोहिता शर्मा का।

अभी आप सुन रहे थे 80वें जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह की रेडियो रिपोर्ट, प्रस्तुति नवीन सिसोदिया की, तकनीकी सहयोग सोहनलाल, अन्य सहयोग मोहनलाल का रहा, आलेख एवं वाचन रोहिताश शर्मा का था। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर। रात के 8:15 हुए हैं। समाचार तरंग अब से कुछ ही पलों में हमारे जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: सेल्फ और सहभागिता की कहानी है। सभी का योगदान भारत की ताकत है। चूरू में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने झंडारोहण किया। कार्यक्रम में कई रंगारंग और आकर्षक प्रस्तुतियां हुई।
1: चूरू जिले में आज 80वां स्वाधीनता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चूरू जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया गया। समारोह में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के पश्चात मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर चूरू अभिषेक सुराणा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। मुख्य अतिथि के परेड निरीक्षण के पश्चात परेड दल में शामिल राजस्थान पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और स्काउट गाइड की टुकड़ियों ने सलामी मंच के आगे से मार्च पास्ट किया। तत्पश्चात स्कूली बच्चों की ओर से बैंड वादन की प्रस्तुति दी गई। वहीं शहर के अनेक शिक्षण संस्थानों के सैकड़ों बच्चों ने सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चूरू अर्पिता सोनी ने महामहिम राज्यपाल के संदेश का पठन किया। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने अपने उद्बोधन में वीर सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए आजादी के इस पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी।
2: हमारे सेनानियों के अदम्य साहस, देश प्रेम की उत्कट ज्वाला और जोश का ही परिणाम था कि 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को भारत में स्वराज का उदय हुआ। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक उल्ला का समस्त देश के उन सभी महान नेताओं, वीरों, सेनानियों और आजादी के योद्धाओं को नमन करता हूं। मैं आप सभी को इस राष्ट्रीय पर्व की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको बताते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि चुरू का स्वतंत्रता संघर्ष और देशभक्ति की गौरवशाली परंपरा से गहरा संबंध रहा है। मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे देश प्रेमियों ने आजादी से करीब 17 वर्ष पहले 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रगान करते हुए चुरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया था और अंग्रेजी शासन को खुली चुनौती दी थी।
1: समारोह में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर चुरू अभिषेक सुराणा, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, विधायक चुरू हरलाल सहारण तथा जिला पुलिस अधीक्षक चुरू निश्चय प्रसाद एम ने वीरांगनाओं, लोकतंत्र और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया। इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले विभिन्न व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के बच्चों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। अभी आप सुन रहे थे चूरू जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन मैदान में आयोजित जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह की रेडियो रिपोर्ट। आकाशवाणी चूरू से रिपोर्ट के साथ मैं कुंज बिहारी।

0: वाला। प्रस्तुति विनोद कुमार हलकिया।
1: झालावाड़ में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने राष्ट्र ध्वज फहराया।
2: सावन की हरियाली में लहराते तिरंगे के साथ हर कोई स्थानीय श्रीमती विजयाराजे सिंधिया राजकीय खेल संकुल झालावाड़ में 80वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक शामिल होने के लिए बेताब था।
3: जश्न आजादी के उल्लास भरे माहौल में प्रातः ठीक 8:58 पर मुख्य अतिथि महोदय जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ का आगमन हुआ।
2: ठीक 9 मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ के ध्वज फहराने और राष्ट्र ध्वज की सलामी के साथ मुख्य कार्यक्रम आरंभ हुआ।
3: परेड कमांडर आरआई झालावाड़ श्री विष्णु सिंह की कमान में राजस्थान पुलिस महिला एवं पुरुष होमगार्ड राइफल और एनसीसी स्काउट गाइड सदस्यों सहित परेड में शामिल सभी पलटूनों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी।
2: मार्च पास्ट के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय श्री कमल सिंह यादव ने मंच से महामहिम राज्यपाल महोदय श्री हरिभाव बागड़े के संदेश का पठन किया।
4: आप लोग प्रसिद्ध होने का दिवस आज पूरा देश सम्मान और गौरव के साथ राष्ट्रपाल मना रहा है। मैं देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले
5: बीते समय में प्रदेश के पश्चिमी भूभाग में सैकड़ों सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई। इनमें सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारा राजस्थान प्रदेश अग्रणी बन गया है। हमें इस उपलब्धि पर गर्व है।
3: स्वाधीनता दिवस के इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में पीटीएस के जवानों ने बेहद आकर्षक फायरिंग डेमो प्रस्तुत किया। इस फायरिंग डेमो में जवानों ने दर्शा दिया कि किस प्रकार से वह जल थल नभ और चारों दिशाओं में देश के दुश्मनों का चुन चुन कर सफाया कर सकते हैं।
2: तत्पश्चात स्काउट और गाइड ने सामूहिक भारतीय व्यायाम प्रदर्शन कर लोगों का मन मोह लिया और पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो गया।
3: और अंत में राष्ट्रगान के साथ झालावाड़ के श्रीमती विजय राजे सिंधिया राजकीय खेल संकुल झालावाड़ में स्वाधीनता दिवस का यह मुख्य समारोह सम्पन्न हुआ।
2: स्थानीय खेल संकुल झालावाड़ में आयोजित 80वें स्वाधीनता दिवस समारोह की रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है।
3: तकनीकी सहयोग ब्रजेश कुमार मीणा और नवीन कुमार लोधा का,
2: संयोजन और प्रस्तुति विमल शास्त्री की,
3: संकलन और वाचन मोहम्मद साजिद और लोकेश व्यास का।
1: सवाई माधोपुर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ध्वजारोहण किया। पुलिस परेड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रभक्ति गीतों पर सामूहिक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में मनाया गया, जहां सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। चित्तौड़गढ़ केंद्र की ये रिपोर्ट।
6: हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 80वां स्वाधीनता दिवस समारोह चित्तौड़गढ़ में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले का मुख्य समारोह चित्तौड़गढ़ के स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि रहे सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग राज्य मंत्री राजस्थान सरकार श्री गौतम कुमार दत्त। कार्यक्रम का प्रारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के साथ हुआ। तत्पश्चात माननीय मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण कर स्वाधीनता दिवस समारोह 2026 की विधिवत शुरुआत की। स्टेडियम में उपस्थित समस्त जन समूह ने राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी दी। परेड कमांडर आरआई अनिल कुमार पांडे के आमंत्रण पर माननीय मुख्य अतिथि श्री गौतम कुमार दत्त ने परेड का निरीक्षण किया। परेड कमांडर अनिल पांडे के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस होम गार्ड एवं अन्य स्कूलों की टोलियां मार्च पास्ट करते हुए मंच से गुजरी। तालियों से मार्च पास्ट का स्वागत किया गया। इसके बाद

0: माननीय राज्यपाल श्री हरिभाव किशन राव बागड़ी का राज्य की जनता के नाम संदेश का वाचन अतिरिक्त जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ दिनेश धाकड़ द्वारा किया गया।
1: मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, आपको 80वें स्वाधीनता दिवस की असीम शुभकामनाएं। हमारी सरकार द्वारा राजस्थान में रिफाइनरी का शुभारंभ हो चुका है, इससे पश्चिमी राजस्थान में उद्योगों को प्रमुख बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर इससे प्रदान होंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है। प्रदेश के पश्चिमी भूभाग में सैकड़ों सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारा राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है। पीएम कुसुम योजना के माध्यम से भी हमारे अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी बन रहे हैं।
0: इसके पश्चात माननीय मुख्य अतिथि सहकारिता विभाग राज्य मंत्री राजस्थान सरकार श्री गौतम कुमार दक ने स्वाधीनता समारोह में अपना उद्बोधन दिया।
2: भारत माता की। मैं इस अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस 2.5 साल के छोटे से टेन्योर में जिस प्रकार से राजस्थान के विकास को नए आयाम दिए, जिस प्रकार से उन्होंने अनेक जो योजनाएं राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण थी, चाहे से वो ERCP योजना हो, चाहे से यमुना जल समझौता हो, उनको धरातल पे लाने का काम किया है। हमारे इस क्षेत्र के लिए जो माही से और जाखम से हमारे इस क्षेत्र में जो पेयजल की कमी है, चंबल से हमारे इस क्षेत्र को पानी मिले पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, उसके लिए भी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं।
0: सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत श्री भुवन भानु सुरेश्वर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ की छात्राओं द्वारा देशभक्ति सामूहिक नृत्य एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शहर चित्तौड़गढ़ की छात्राओं द्वारा सामूहिक रूप से देशभक्ति से ओत प्रोत नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी गई। राष्ट्रगीत वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान के साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़ में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह 2026 का समापन हुआ। आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ की OB टीम के साथ मैं वर्षा अग्रवाल।
3: इसके अलावा 80वें स्वतंत्रता दिवस को अन्य जिलों में भी समारोह पूर्वक मनाया गया। कई जिलों में मंत्रियों ने तो कहीं जिला कलेक्टर ने ध्वजारोहण किया। आइए हम सभी स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें कि देश की एकता और अखंडता को सदैव सर्वोपरि रखेंगे। इसी गर्व के साथ आप सभी को एक बार फिर स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आलेख डॉ. सालिहा गाजी, वाचन स्वर रितिका गुप्ता, संपादक हेमलता बालवानी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। जय हिंद, वंदे मातरम।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों पर आधारित विशेष समाचार तरंग। इसमें आलेख था डॉक्टर सालेहा गाजी का, वाचन स्वर रितिका गुप्ता, संपादन हेमलता बालवाणी का और प्रस्तुतकर्ता थे रामनाथ मीणा। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है।
1: अप टू 85% एलडीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत कड़क है। रात के 8:30 हुए हैं। स्पोर्ट्स स्कैन आपसे कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं अतहर सईद आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में भी हम लेकर आए हैं खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग, यानी खेल जगत की बड़ी खबरें आपके लिए। आज 15 अगस्त है, यानी आज हमारा राष्ट्र मना रहा है 80वां स्वाधीनता दिवस। तो सबसे पहले सभी सुनने वालों को स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक। सबसे पहले एक नज़र आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक 2036 की मेजबानी की दावेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने वेल्स को 3-1 से हराया। श्रीलंका के साथ दो मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान नंदा ने शतरंज के सिंकफील्ड कप के 5वें दौर में अमेरिका की वेस्ली सो के साथ बाजी ड्रॉ खेली। भारत आज अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया और देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश में खेल, खिलाड़ियों की संभावनाओं, खेल के लिए सरकार की भविष्य की योजना और ओलंपिक 2036 की मेजबानी की दावेदारी करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
1: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि अब खेल के पोडियम पर भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, तिरंगा लहराता दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, खेल संरचनाएं, खेल के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए पोषण के क्षेत्र में भारत महारत हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है, भारत के पदकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्री मोदी ने कहा कि हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हम जिन खेलों में क्वालिफाई नहीं कर पाए

0: सकते उन पर ध्यान दें। हम इसके लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाना चाहते हैं। गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल 5 से 15 साल के बच्चों में प्रतिभा ढूंढने के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि प्रतिभा की पहचान की जाएगी और फिर बच्चों को प्रशिक्षण देकर उन्हें देश के श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में विकसित किया जाएगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात हॉकी की। नेदरलैंड्स के एम्स्टलविन में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। मैच के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ हैं हमारी सहयोगी करिश्मा राय।
2: 5 दशक के बाद विश्व कप में पदक जीतने के इरादे से उतरी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की मदद से अपने अभियान की अच्छी शुरुआत की। अपना दूसरा ही विश्व कप खेल रही वेल्स की टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहले 5 मिनट में गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा। दूसरे ही मिनट में वेल्स ने भारतीय सर्कल में प्रवेश किया जब फ्रेड न्यूबोल्ड के पास जैक प्रिचार्ड का शॉट गोलकीपर सूरज करकेरा ने बचा लिया। बाद में भारत ने जवाबी हमला शुरू किया और हार्दिक सिंह ने 7वें मिनट में टीम को पहला पेनल्टी कॉर्नर दिलाया। दूसरे पेनल्टी कॉर्नर को संजय राणा ने गोल में परिवर्तित भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। भारत को 11वें मिनट में तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला जिस पर कप्तान हरमनप्रीत ने कोई चूक न करते हुए भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में दोनों ही टीमों को कोई सफलता नहीं मिली। हाफ टाइम तक भारत के पास 2 गोल की बढ़त बरकरार थी। मैच के 42वें मिनट में हरमनप्रीत ने बाईं ओर दमदार शॉट पर अपना दूसरा गोल दागते हुए भारत की बढ़त को 3-0 पर पहुंचा दिया। आखिरी मिनट में वेल्स ने अंतर कम करने की भरसक कोशिश की और 56वें मिनट में सेम वेल्स ने अपनी टीम के लिए एकमात्र गोल किया। हरमनप्रीत को बेहतरीन प्रदर्शन के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मुकाबला 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप में ये कहा जा सकता है कि आगाज़ तो अच्छा है और जब शुरुआत अच्छी हो, धमाकेदार हो, शानदार हो तो उम्मीद तो बेहतर की जा सकती है ना।
3: जी बिल्कुल अतर, शुरुआत बेहद शानदार रही है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह जो थे उन्होंने फ्रंट से आज लीड किया और बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है दिखाया है सभी खिलाड़ियों के लिए। उन्होंने अहम मौकों पर गोल किए। इसके साथ ही अन्य खिलाड़ियों ने भी उनका भरपूर साथ दिया, चाहे वो संजय राणा हो या गोलकीपर सूरज करकेरा हो, हार्दिक सिंह, जर्मनप्रीत सिंह। टीम एफर्ट के साथ साथ ये जीत हमको देखने को मिली है। भारत को अपना अगला मुकाबला 17 तारीख को इंग्लैंड से और 19 को पाकिस्तान से खेलना है, तो इसी लय को बरकरार रखते हुए जीत की कामना करेंगे।
1: बिल्कुल, जीत के क्रम को बरकरार रखने के लिए हमारी शुभकामनाएं भारतीय हॉकी टीम के साथ हैं। और बात क्रिकेट की। गॉल में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पड्डीकल 131 रन और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद हैं। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। इस मैच के बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी सहयोगी नेहा गोस्वामी।
4: भारतीय क्रिकेट इतिहास के 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने 47 रन की साझेदारी की। जायसवाल 32 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद केएल राहुल ने देवदत्त पड्डीकल के साथ दूसरे विकेट के लिए 150 रन जुटाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। तीसरे सत्र की शुरुआत में केएल राहुल मांसपेशियों में ऐंठन के कारण खेल जारी नहीं रख सके और 162 गेंदों में 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। कप्तान शुभमन गिल 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बारिश के कारण खेल कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। खेल दोबारा शुरू हुआ। देवदत्त पड्डीकल ने ऋषभ पंत के साथ 67 गेंदों में 52 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। पड्डीकल 178 गेंदों में 131 रन बनाकर नाबाद हैं। उनकी पारी में 1 छक्का और 12 चौके शामिल हैं। पड्डीकल का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह पहला शतक है, जबकि पंत ने 36 गेंदों में 1 छक्के और 3 चौकों के साथ 27 रन जोड़ लिए हैं। श्रीलंका की तरफ से एकमात्र सफलता प्रभात जयसूर्या ने हासिल की। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: विशेष आज पड्डीकल की अगर बात करें तो उन्होंने कमाल ही कर

0: या आज की नबात पारी में उन्होंने कई नए कीर्तिमान भी बनाए।
1: जी अतर, और आज की देवदत्त पड्डीकल की पारी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आई है,
0: बिल्कुल
1: और ऐसा करने वाले वह पहले टेस्ट बैटर बन पाए हैं। इसके अलावा इनसे पहले विराट कोहली ने ओडीआई सेंचुरी मारी है 2019 में, और विराट कोहली ने गणतंत्र दिवस पर 2012 में शतक जमाया था टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर टेस्ट क्रिकेट में 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए ये पहला शतक है
0: एक
1: भारत
0: तरह से
1: की।
0: सलामी है ये तिरंगे
1: जी
0: को।
1: जी बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ वो 2024 के बाद पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने तीसरे नंबर पर भारत के लिए टेस्ट में शतक लगाया है। 19 टेस्ट मैच में 7 बल्लेबाजों को आजमाने के बाद भी भारत को अपना शतकवीर नहीं मिला था, देवदत्त पड्डीकल ने वो करके दिखाया।
0: बिल्कुल।
1: इससे पहले ये रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम था जिन्होंने 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ ये शतक लगाया था।
0: अच्छा, भारत की ओर से आज ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल रिटायर्ड हर्ट हुए, अन्यथा शायद भारत का स्कोर और बेहतर होने की संभावना थी।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि केएल राहुल जो है बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने 162 गेंदों पर 77 रन की पारी खेली और 9 चौके और 1 छक्का लगाया। उनको एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी के चलते बहुत सारे क्रैम्प से जूझना पड़ रहा था और इसीलिए उन्होंने अपने खेल आगे ना जारी रखने का निर्णय लिया।
0: बिल्कुल, आपने चर्चा की विशेष कि देवदत्त पड्डीकल ने आज ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया। उन्होंने शतक बनाया आज के इस मैच में, 15 अगस्त के दिन उन्होंने शतक बनाया, शतक वीर कहलाए। लेकिन विशेष इसके अतिरिक्त भी ये मैच एक ऐतिहासिक मैच है, क्योंकि ये भारत का 600वां टेस्ट मैच है, और भारत का अब तक का सफ़र कैसे रहा, ये चर्चा मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ।
1: अतर, 1932 में शुरू हुई ये टेस्ट क्रिकेट की जर्नी भारत के लिए अभी बहुत ही अच्छे पड़ाव पर पहुंच चुकी है, क्योंकि शुरुआती 100 टेस्ट मुकाबलों में भारत ने सिर्फ 10 में से जीत दर्ज करी थी, लेकिन हम अगर अपने आखिरी के 100 टेस्ट मुकाबलों की बात करें तो उसमें से 56 में से हमने जीत दर्ज करी। कुल मिलाकर बात यह है कि 600 मुकाबलों में 186 मुकाबले जीते हैं, 188 हारे हैं और 224 मुकाबले ड्रॉ खेले हैं।
0: बिल्कुल। उधर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की चर्चा करें तो बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। टेस्ट के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक आज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 161 रन बनाए। एक रिपोर्ट।
2: ऑस्ट्रेलिया पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश द्वारा ली गई 228 रनों की विशाल बढ़त से 67 रन पीछे है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत एक बार फिर खराब रही। जैक वेदराल्ड को हसन महमूद ने बिना खाता खोले पवेलियन भेजा। इसके बाद ट्रेविस हेड भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 35 गेंदों में 17 रन बनाने के बाद आउट हुए। मार्नस लाबुशेन ने आगाज तो अच्छा किया, लेकिन वे अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके और 31 रन बनाकर आउट हुए। पहली पारी में अर्धशतकीय पारी खेलने वाले स्टीव स्मिथ 88 गेंदों का सामना करने के बाद 44 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दिन का खेल खत्म होने तक कैमरून ग्रीन 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं और उनका साथ एलेक्स कैरी 19 रन बनाकर दे रहे हैं। पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले हसन महमूद दूसरी इनिंग में अब तक 2 विकेट चटका चुके हैं। इससे पहले बांग्लादेश की पूरी टीम पहली पारी में 426 रन बनाकर ऑल आउट हुई। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 198 रन बनाकर सिमटी थी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: विशेष यदि हम बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच की चर्चा करें तो बांग्लादेश इस समय एक सुरक्षित स्थिति में कहा जा सकता है।
1: बिल्कुल अतर, क्योंकि आज तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी भी 67 रन से पीछे है, और अगर कल मुकाबला खेला जाएगा तो 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है, जो कि बांग्लादेश आसानी से लेने की कोशिश करेगा। और आखिरी दिन अगर ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा स्कोर भी बनाती है तो बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं होंगी उसको चेस करने के लिए। तो ये मुकाबले में बांग्लादेश की स्थिति काफ़ी मजबूत है, वो ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल, और इसमें कई सारे कीर्तिमान भी बने विशेष।
1: जी बिल्कुल, अगर हम एक कीर्तिमान की बात करें तो स्टीव स्मिथ ने एक नॉन विकेट कीपर होते हुए जो रूट के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। उन्होंने 218 जो कैचेस का रिकॉर्ड था वो अपने नाम कर लिया है, क्योंकि उन्होंने जो रूट से कम टेस्ट मुकाबले खेले हैं। इसके साथ ही साथ जोश हेजलवुड 9वें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 300 विकेट का आंकड़ा छू लिया है।
0: और अब शतरंज। सेंट लुई में खेली जा रही ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंक फील्ड कप के 5वें दौर में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका के वैसली सो के साथ बाजी ड्रॉ खेली है। प्रज्ञानंदा ने काले मोहरों से खेलते हुए बाजी ड्रॉ कराई। 10 खिलाड़ियों के बीच खेली जा रही इस प्रतियोगिता में उनके 5 मैच में अब 3 अंक हो गए हैं और वो संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। वैसली ने 3.5 अंकों के साथ बढ़त बना रखी है। इस बीच अमेरिका

के फैबियानो कारुआना और जर्मनी के विंसेंट कीमर ने सफेद मोहरों के साथ सबसे महत्वपूर्ण समय पर जीत हासिल की। कारुआना ने पांचवें दौर में आर्मेनियाई मूल के अमेरिकी खिलाड़ी लेवोन ओरोनियन को, जबकि विंसेंट ने खराब फॉर्म में चल रहे अनीश गिरी को हराया। इस तरह से अब प्रज्ञानंदा कीमर कारुआना और मैक्सिम वचियर लग्रेव तीन तीन अंक लेकर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की सानिया वत्स आज पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट वेंडिगो ओपन स्क्वाश के महिला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी रेचल ग्रीनहम से पांच में गेम के रोमांचक मुकाबले में हार गई। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी सानिया को ग्रीनहम से 6-11, 11-8, 9-11, 11-8, 7-11 से हार का सामना करना पड़ा। सानिया ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की सातवीं वरीयता प्राप्त जो टेनर को 11-3, 11-1, 11-2 से हराया। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। कल इसी समय स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर होगी मुलाकात। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अतहर सईद को स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
2: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और

0: समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
1: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को

0: सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महिशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट

0: भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माओमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
2: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण हैं। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने

0: 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh, and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day one of first test against hosts Sri Lanka. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, the Prime Minister said over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said, "A nation achieves greatness when it moves forward on the strength of its own dreams and resolve." The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
2: Koi bhi rashtra tab mahaan banta hai jab apne sapnon, apne sankalpon aur apne samarthya ke dam par aage badhta hai. Bade sapne hamari soch ko vistar dete hain. Hamare sankalp dhrad hone chahiye. Jab sankalp dhrad hota hai to kathinaiyon se आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: Prime Minister Modi said energy security is one of the major requirements of the present times, and the government has taken several significant steps in this direction. He said nuclear energy is an important means of ensuring a country's energy security.
2: Energy security ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: Prime Minister Modi said the government has opened up 99% of offshore areas that were once designated as no-go zones and converted them into go-ahead areas. He said the government is now actively pursuing exploration beneath the sea and making efforts to discover new reserves.
2: हमने 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया, और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त है, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया।
1: स्ट्रेसिंग ऑन एम्पावरमेंट ऑफ

0: an expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against host Sri Lanka. That is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल। रात के 9:15 हुए, आप सुने सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कुछ फिल्मी गजलें भूपेंद्र सिंह की गाई हुई।

ये गजल हमने ली है फिल्म मौसम से। शायर गुलजार हैं और मौसिकी मदन मोहन की है।

निदा फाजली की लिखी गजल सुने। मौसीकी खयाम की है और फिल्म का नाम है आहिस्ता आहिस्ता।

भूपेंद्र सिंह की गई सी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये हमारा आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

पहला गीत आपने सुना फिल्म शहीद से, इसी फिल्म का ये एक और देशभक्ति गीत सुने, मोहम्मद रफ़ी और खान मस्ताना की और साथियों की आवाज़ों में।

मन्नरी की आवाज में आइए सुने ये देशभक्ति रचना फिल्म काबुलीवाला से। प्रेम धवन के इस गीत को संगीत दिया है सलिल चौधरी ने।

फूल बने अंगारे। इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 10 बजे हैं, अगला प्रसारण कुछ ही पलों में।

0: खान का सितारवादन। मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मे जुनैन खान का बचपन मुंबई में बीता। मात्र 5 वर्ष की आयु में अपने पिता सुप्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार की शिक्षा प्रारंभ की। उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान ने अपने अभिनव जाफर खानी बास के माध्यम से सितार की रचना, वादन शैली, तकनीक और इस वाद्य की संभावनाओं को एक नई दिशा प्रदान की। जाफरखानी बास को लयात्मक नवाचार और स्वर की गहराई पर आधारित सितार वादन की एक दुर्लभ और अत्यंत परिष्कृत परंपरा के रूप में जाना जाता है। इस शैली के तकनीक के बारे में श्री जुनैन खान बताते हैं कि इसमें एक साथ दो और कभी कभी तीन तारों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बाएं हाथ की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों हाथों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होता है। श्री जुनैन खान हलीम अकादमी ऑफ सितार के कार्यकारी निदेशक हैं। यह भारत की पहली सितार अकादमी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1976 में उनके पिता उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान ने की थी। श्री जुनैन खान जाफरखानी शैली में भारत तथा विदेशों के विद्यार्थियों को सितार की शिक्षा प्रदान करते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संगीत समारोहों का आयोजन करते हैं और अपने विद्यार्थियों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। श्री जुनैन खान ने भारत के अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोह और मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है। तानसेन समारोह ग्वालियर, संगीत नाटक अकादमी के तत्वाधान में आयोजित मारवाड़ समारोह, जिसे पूर्व में मंड समारोह के नाम से जाना जाता था, सामापा संगीत सम्मेलन नई दिल्ली, पंडित नंदकिशोर शर्मा स्मृति समारोह भोपाल, विश्व संगीत दिवस 2025 मैसूर, राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह नई दिल्ली प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने प्रस्तुतियां दी है। फ्रांस के नांत में आयोजित फेस्टिवल द एते, इंटरनेशनल रोंडाला फ्लैट स्ट्रिंग फेस्टिवल फिलीपींस, जोंजू इंटरनेशनल सोरी फेस्टिवल दक्षिण कोरिया और अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित इंडिया कम्युनिटी सेंटर में आयोजित बसंत बहार में अपनी प्रस्तुतियां दी है। श्री जुनैन खान चीन के बीजिंग में आयोजित भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के आधिकारिक सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में भी भाग ले चुके हैं। अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आप आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। वर्ष 2018 में सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा सामापा संगीत तेजस्वी सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स अर्थात NCPA के सहयोग से गान वर्धन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अर्थात ICCR द्वारा एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है श्री जुनैन खान का सितार वादन। आज की प्रस्तुति का आरंभ वे करेंगे राग रागेश्री से। विलंबित गत तीन ताल में निबद्ध है और द्रुत गत भी तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अनीश प्रधान।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय रेनाउंड सितारिस्ट श्री जुनैन खान। बोर्न इन भोपाल मध्य प्रदेश, जुनैन खान ग्रू अप इन मुंबई। He began playing sitar at the age of 5 under the tutelage of his father, Ustad Abdul Halim Jafar Khan, who transformed sitar composition, playing style, technique and pedagogy as well as capabilities of the instrument through his innovation of the Jafar Khani Baz. Jafar Khani Baz style has been described as a rare, highly sophisticated tradition of sitar playing rooted in rhythmatic innovation and tonal depth. Zunain Khan explains the technique as involving the simultaneous use of two or sometimes three strings. The left hand is called upon to do much more work, resulting in a better synchronization between the two hands. Zunain Khan is the executive director of Halim Academy of Sitar, the first sitar academy in India, founded in 1976 by his father. He teaches sitar in the Jafar Khani style students across India and abroad and organizes music events to commemorate Guru Purnima and showcase performances of his students. Zunain Khan has performed at prestigious

0: ये था राग रागेश्री। अपने सितार वादन को जारी रखते हुए श्री जुनैन खान अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग किरवानी। द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Raag Rageshri by Shri Zunain Khan. He continues his sitar recital with Raag Kirwani. Drutgat set to Teen Taal.

0: आप सुन रहे थे राग केरवानी। आज के संगीत कार्यक्रम का समापन श्री जुनैन खान राग देश में धुन से कर रहे हैं। दादरा ताल में निबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू कीरवानी। ही कंक्लूड्स हिज सितार रिसाइटल विद धुन इन राग देश सेट टू ताल दादरा।

0: ये थी राग देश में धुन। इसी के साथ आज के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में श्री जुनैन खान का सितार वादन संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर थे श्री अनीश प्रधान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई केंद्र में ध्वनि मुद्रित एवं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: दैट वॉज धुन इन राग देश एंड दैट कंक्लूड्स द सितार रिसाइटल बाय श्री जुनैन खान। In tonight's national program of music, he was accompanied on the tabla by Shri Anish Pradhan. This program was recorded at the studio of Akashwani Mumbai and the broadcast came to you from Akashwani Delhi.

आकाशवाणी का ये गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। ये समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले

0: पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। इंडोनेशिया में आज फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार कई प्रभावित इलाकों में अब भी लोगों के इमारतों के भीतर फंसे होने की आशंका है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र और उत्तराखंड में कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।